0: फिटे तन फिटे फिर करीन, मन जूठे चली परहेन। कहु नानक सच ते आई है, सुच होवे ता सच पाईए पौड़ी।
1: जितेंद्र सबको विघ्नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे बढ़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा। वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा, नदर बठी जे करे सुल्ताना काऊ कराए।

साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਲਕਾ ਸਿੰਘ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस

0: कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आओ सुनते हैं गांधी चर्चा।

चित्रकूट में माताओं से श्रीराम सीता और लक्ष्मण के साक्षात्कार और चारों भाइयों के परस्पर मिलन का दृश्य, जहां एक ओर स्नेह सिंचित था, वहां दूसरी ओर अयोध्या पति के निधन के समाचार ने एक बार फिर सभी को शोक के सागर में डुबो दिया। दूसरे दिन कुलगुरु के आदेशानुसार वैदिक रीति से श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्राद्ध संपन्न करके वैसे ही शुद्ध हुए जिस प्रकार तीर्थों के आवाहन से पतित

पावनी गंगा शुद्ध होती हैं। अद्भुत दृश्य उपस्थित है चित्रकूट में, जहां दुखी अयोध्यावासी कंदमूल और फल का आहार करते हैं। भरत शत्रुघ्न मंत्रियों तथा माताओं को व्याकुल देख श्री राम को एक एक पल भारी हो रहा है, अतः उन्होंने वशिष्ठ जी से सबको लेकर अयोध्या लौट जाने का आग्रह किया।

0: सर्वत्र बहुमानिताः सन्ति। सा विश्वासं व्यक्तवती यत् भारतं सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। नवदिल्ल्यां राजघाट इत्यत्र महात्मगान्धिनः समाधौ सर्वधर्मप्रार्थनासभा आयोजयिष्यते। गान्धीजयन्त्याः अवसरे अद्य पूर्वप्रधानमन्त्रिणः लालबहादुरशास्त्रिणः 22nd जयन्ती अपि विजयघाट इत्यत्र आयोज्यते। एतद् दृष्ट्वा यातायातारक्षिबलेन राजघाट विजयघाटयोः समीपे यातायातसम्बद्धं परामर्शं प्रसारितमस्ति।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: फ्लाइट दुबई विमानस्य दुर्घटनायां क्षतिग्रस्तः कैप्टन स्मिथ मछार इत्येषः स्थिरावस्थायां वर्तते तथा तस्य स्वास्थ्यमपि सम्यक् भवति। संयुक्तारबामिराते भारतस्य राजदूतः डॉक्टर दीपक मित्तलः प्रसारभारत्यै प्रदत्ते एकस्मिन् विशेष साक्षात्कारे एतत् संसूचितवान्। डॉक्टर मित्तलेन उक्तं यत् सः संयुक्तारबामिराते कैप्टन मछार इत्यनेन तस्य परिवारेण च सह मिलितवान् तथा तं प्रसन्नचित्तमपि दृष्टवान्। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्याः बृहद् दुर्घटनायाः निवारणे प्रदर्शितस्य कैप्टन मछार इत्यस्य साहसस्य प्रशंसां कृतवन्तः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य अरुणाचल प्रदेशे प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। विभागेन उक्तं यत् आगामिषु 48 होरासु पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्डानाम् अवशिष्टेषु भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृशः प्रत्यावर्तनाय अनुकूलाः परिस्थितयः सम्भाव्यन्ते। ऋतुविभागेन अद्य केरलमाहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य सम्भावना पूर्वानुमानिता। जापानदेशे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 66 जाता, यस्मिन् 10 सुवर्णपदकानि 23 रजतपदकानि तथा 33 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र न्यूज हेडलाइंस पेश ने मुख खबरां। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नू उना दे 157वें जन्म दिहाड़े ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। गांधी जयंती मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी दा शांति ते अहिंसा दा संदेश दुनिया दे कई हिस्सों विच चल रहे जंग ते टकरा दे माहौल विच होर भी प्रसंगिक हो गया है। गांधी जयंती मौके अज देश भर च विशेष ग्राम सभावां होणगियां। सरकार वलों दिव्यांगजन ते PWD वाहनां लई छोट वाले फास्टैग्स जारी करने लिए दिशा निर्देशों च सोध की गई है। जन्म ते मौत रजिस्ट्रेशन सोध कानून लागू हो गया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब दे नंगल विच विश्व हिंदू परिषद आगू विकास प्रभाकर दे कतल दे इल्जाम च हरविंदर कुमार उर्फ सोनू बरनाला नू भारत वापस लियाउण विच सफलता हासिल कीती है। पंजाब ने सितंबर 2026 दौरान GST प्राप्ति विच साल दर साल 22.11% दा मजबूत वाधा दर्ज कीता है। SGST संग्रह 877.82 करोड़ रुपए होया जो कि देश च सब तो वध है। ਪੰਜਾਬ 'ਚ

0: 7:30 बजे की बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जानगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय का ध्यान रखण।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: लाइव मॉर्निंग शो सोनी सवेर। आज गांधी जयंती है, आज अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी नूं असीं याद करते हैं, उन्हां दा जन्म दिवस है। साढ़े नाल फोन लाइन दे उत्ते मौजूद ने डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस काउंसलर सैकटरी समर्पण सोसाइटी, प्रोग्राम अफसर जिला हैरीटेज सोसाइटी, लेखक प्रेरणादायक बुलारे सरदार परमिंदर सिंह सैनी जी, स्टेट अवार्डी। आओ उन्हां नाल गल कर लईए। हैलो
3: भारत दूजे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिहाड़ा भी मना रहे ही साडा अंतरराष्ट्रीय दिवस विश्व अहिंसा दिवस। असि यह सारिया गलां अज इकट्ठिया करांगे ते नाल ही साडे जिहड़े अज दे सुन रहे ने इस साडे प्रोग्राम नूं, उन्हां सारिआं नूं इक मेरी बेनती है कि अज दे दिहाड़े दे उत्ते असीं कुछ चंगा करके चंगा सोचण दा इक प्रण करना ते असीं अपने देश नूं जिहड़ा साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी दा विकसित भारत संकल्प आ उहनूं असीं दोहराउणा ते असीं भारत नूं अजिहा बणाउणा कि असीं विश्व भर दे विच एक विश्व शक्ति बन के उभर आईए। अज असी अंतरराष्ट्रीय दिवस के उत्ते गल्लां करांगे, जिथे विचार सांझे करांगे अपने स्रोतियां दे नाल, उत्थे नाल ही महात्मा गांधी जी द्वारा देश दे विच जो लंबी घारणा आजादी की लड़ाई लड़ी ते वह आजादी की लड़ाई अहिंसा का उपदेश दिंदिया लड़ी कि असी कदे भी हिंसा नूं अपनाउणा नहीं। असी अपने देश दे विच अपनियां देश दीआं बणीआं वस्तां जिहड़ियां ने खादी पहननी, जिथे उन्हां ने खादी नूं पहन के लोकां नूं इह दस्सिया कि असी उन्हां लोकां मगर नहीं लगना, असी अपने प्रोडक्ट आप बनाउणे ने ते आप उन्हां दा उपयोग करना, असी विदेशां तों कुछ नहीं मंगाउणा। साडे असी भारत इह समर्थ आ कि उह अपने देश दे विच अजिहियां चीजां बना सके ते अजिहियां चीजां दी वरतों कर सके, असी अपने जीवन दे विच अजिहा संकोच करना। महात्मा गांधी जी ने जिथे सानूं इह कहा अपने विदेशां दे विच दस्सिया, लोकां दे विच इह वर्णन कीता कि ना बुरा कहो, ना बुरा देखो ते ना बुरा सुनो। ये उन्हां दे मुख उपदेश साडे जीवन दे ढांचे नूं इक बदलण लई बहुत वड्डी पहल सी कि असीं जदों बुरा बोलदे आ, बुरा देखदे आ ते बुरा सुणदे आ ते साडे मानसिक तौर ते असीं कमजोर हो जांदे आ। साडी जिहड़ी किसे वी साडे काम करन दी समर्था, साडी सोचण दी समर्था उहनूं ढा लगदी आ ते असीं अपने आप नूं ग्लोबल पद्धर दे उत्ते, विश्व पद्धर दे उत्ते अपनी जिहड़ी एनर्जी आ उहनूं चैनलाइज़ करके ठीक पासे नहीं ला सकदे। उहनां ने महात्मा गांधी जी दा जन्म 2 अक्टूबर 1869 नूं होया सी ते जिथे उहनां ने सारा जीवन एक सादा जीवन बतीत करके लोकां दे विच इह उपदेश दित्ता कि असीं जिंदगी दे विच सादे रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। सानूं कोई वड्डी फौज की लोड़ नहीं, साडे नाल बहुते लोकां की लोड़ नहीं, साडे मन दे विचार असीं जदों बोलदे आ ते असीं अपने जीवन नूं जे लोकां दे विच ढालिया होवेगा, लोकां दे विच विचरे होवांगे, लोक साडे विचार सुण लई वड्डियां वड्डियां गैदरिंग्स होणगीआं, उह आप मुहारे साडे वल आउणगे। जदों असीं बुरा देखदे नहीं, बुरा सुणदे नहीं ते साडे मूंहों बुरा बोल भी नहीं निकल सकदा। इह उहनां दे उपदेश सन, इहनां दे उपदेशां दे उत्ते सानूं अज अपनाउण दी लोड़ आ। असीं अज उहनां दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ।

0: लड़ रहे थे तो उन्होंने उन्हां दे हौसले बुलंद करने लई किसानी के हौसले बुलंद करने लई ते साडे देश के जिहड़े बहादुर फौजी बार्डर से लड़ से उन्होंने हौसले बुलंद करने लई उन्होंने एक नारा दिता जय जवान जय किसान। जय किसान जवान जय किसान का नारा देश की हर गली दे विच गूंजिया ते उत्थों ही जिथे साडे देश के बहादुर जिहड़े सी आर्मी अफसर ते साडे जवान सी उन्होंने देश विरोधी ताकतां ते साडे जिहड़े मनसूबे सी भारत पाकिस्तान लड़ाई दे विच साडे देश ने बहुत वड्डी जित प्राप्त कीती। ये उन्हां दा नारा जिहड़ा सी उह गली गली दे विच गूंजिया ते गली गली दे विच हर बच्चे दे जबान दे उत्ते जय जवान ते जय किसान दा नारा जदों आया ते साडा देश जिहड़ा सी उह इक इतिहासक जित लैके ते इक जिहनूं कहिंदे आ इतिहासक साडा जिहड़ा सी क्रांतिकारी हरी क्रांति जिहड़ी सी उस नारे दे विचों उपजी ते साडे देश जिहड़ा सी अज साडी फौज जिहड़ी आ उह इत्थे तक पहुंच चुकी आ सी असीं विश्व शक्ति जिहड़ी आ बन गए आ। अज साडा देश जिहड़ा उह विश्व शक्ति वजों विकास हो रहा साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी जिन्हां ने विकसित भारत दा सुपना जिहड़ा सी उहनूं लैके चले ने इह साडे पुराने साडे जिहड़े पूर्वज ने उहनां दीआं घालणा करके इह जिहा जिहड़ा साडा देश आ विकास वल वध रहा ते अज असीं जिथे ये चीजा मना रहे हैं उथे नाल ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिस रही है जिथे साडे नौजवान जिहड़े ने किसे ना किसे साडे जिहड़े समाजिक जिहड़े जिहड़े कह लईए भैड़े तत्व ने जिहड़े साडे देश नूं नुकसान पहुंचाउंदा चाहुंदे ने भावें अंदर वड़ के ते भावें बार्डर ते उहनां दी सदा ये मन की इच्छा रही है कि भारत का जूथ जिहड़ा अज असी दुनिया दे विच सब तो वड्डी शक्ति साडे तो जूथ ही है साडा नौजवान भारत का नौजवान जिथे अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते साडियां बहुत वड्डियां प्राप्तियां ने साडे देश दे विच असी सानू माण आ कि दुनिया दियां सब तो वड्डी यूनीवर्सिटी जिहड़ी सी उह भारत दे विच सी ते जिथों हर चीज जिहड़ी साडी यूनीवर्सिटियां दे ज्ञान दा जिहड़ा सी सोमा भारतीय यूनीवर्सिटियां टैक्सा ते नलंदा यूनीवर्सिटियां साडे भारतीय यूनीवर्सिटियां सी ज्ञान दे सोमे ने साडे जिथों अज असी विकसित भारत दा संकल्प लै के साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी ने शुरू की जी शुरुआत की है असी जिहड़ा उन्हां दा सुपना उत्तों जिहड़ा उन्होंने टारगेट लिया सानू उम्मीद आ कि उस टारगेट नूं असी बहुत पहला ही प्राप्त कर लवांगे ते भारत जिहड़ा उह साडे पूर्वजां दे जो उन्होंने मनोरथ सन जो उन्होंने उपदेश सन असी उन्हां ते चल के असी बहुत छेती वो उपलब्धि नूं हासिल कर लांगे। अज असी विश्व अहिंसा दिवस दे उत्ते असी नौजवान पीढ़ी नूं अजिहा मोटीवेट करना कि वो कदे सोचण भी ना कि असी जिंदगी दे विच अपने देश की प्रॉपर्टी नूं किसे दे कहे दे उत्ते नुकसान पहुंचाउणा। पिछले दिनां दे विच बहुत चिंताजनक घटनावां वापरियां ने मेरी यूथ नूं इहो अपील आ कि पढ़ाई दे स्थानां दे उत्ते सानूं गैर समाजिक तत् जिहड़े ने कदे हल्लाशेरी दिंदे ने अफवाहां फैलाउंदे ने पंजाब जिहड़ा साडा सरहदी राज आ इत्थे नशा ते होर जिहड़ियां चीजां सी गैर समाजिक तत् जिहड़े हथियार सी भारी मात्रा दे विच साडी भारत सरकार पंजाब सरकार जिहड़ी आ उहनां दीआं उपलब्धियां ने कि उह रोक रही आ ते इह जिहड़े समाजिक तत् ने उह अंदर आ के इह जिहियां चीजां करना चाहुंदे ने इहनां नूं बेनकाब करन दी लोड़ आ। अहिंसा दा उपदेश अज दे दिन दे उत्ते असीं जिथे दिंदे आ उहनूं उपदेश नूं अपने घरां च लैणा अपने बच्चियां नूं समझाउणा ते इह कहिणा कि असीं देश नूं असीं हर उह भैड़े तत् तों बचाउणा भावें किसे भी विचारधारा दे विच आ के सानूं नुकसान पहुंचाउण दी कोशिश करे असीं उहनां नूं बेनकाब करके मैं तां इत्थों तक कहांगा कि इह लोक जिहड़े अजिहा काम करा रहे ने जिहड़ा सोचदे ने उह देश धरोई ने ते साडियां सरकारां नूं उहनां ते इहो जिही लगाम कसणी चाहीदी आ कि उह देश धरोई दे परचे होणे चाहीदे उहनां दे उत्ते तां जो भविख दे विच विद्यक संस्थावां दे विच अजिही चीज़ कदे पैदा ना कर
1: सकण। यही जो है अज का जड़ा है जो असी तहैया कर लिए अहिंसा का मतलब यह भी होंदा है कि असी अपने आप नूं उस लड़ाई तो थोड़ा जिहा दूर रखना जिस लड़ाई का कोई मायना ना होवे। सो वधिया जानकारी तुसी दे रहे हो ते समय नूं हुण मैनूं देखना पै रहा नहीं तो होर बहुत ज़्यादा जानकारी तुहाडे कोलों होर भी लैंदे ते आपां फिर दुबारा जरूर मिलांगे जी। बहुत बहुत धन्नवाद आप जी का बहुत शुक्रिया
0: जी। मेहरबानी
1: सर। सो अज का दिन मुबारक ता ही हो सकता है जे असी अपने बच्चों उस राह दे उत्ते तोरीए उन्हां सिद्धांतां दे नाल जोड़िए जिहड़े कि महात्मा गांधी जी ने जो पूरने पाए ने जो उन्होंने दस्या।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर

0: बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेकेड्स There was a demand for this bridge. With your blessings, we

0: got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
1: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरै डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्यभूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
3: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
4: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना, जिसके द्वारा जो CBG प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है MSMEs के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
5: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मिथ को पूरी दुनिया ने किया सलाम। जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, UPSC के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा।

0: अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा, अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है, महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति। गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है, तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हरा कर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash Fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi Rajghat in the national capital.

0: advantage in the third set with a 55-point score against Korea's 52. In the fourth set, a crucial score collection turned Kirti Sharma's 8 into a 9, taking India to 54 points and sealing the gold. Earlier, India defeated China 5-1 in the semi-final to reach its first ever Asian Games Women's Recurve Final. This is India's first Asian Games gold in the Women's Recurve Team event. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Abhishek. On the Fly Dubai flight incident, Hindustan Times leads, averted a 9/11 style tragedy, Modi lauds Captain Machar, injured Indian captain's table, attack motive still unclear, headlines the Asian Age. Israeli leaders hail Indian pilot as hero, states the Pioneer. At the UPSC centenary celebrations, the Asian Age reports, Modi pushes citizen-first approach in civil services. UPSC turns 100, Prime Minister urges shorter exam cycles, youth-centric reforms, reports the Indian Express. Supreme Court bars license renewal for motorists with unpaid fines, informs the Hindu. And finally, Silesau land in City of Joy amid tight security. Well, the Indian Express reports that five-time football world champions Brazil landed in Kolkata on Thursday night for their much-awaited friendly with India on Saturday. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Nation pays homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. And India bags gold in the Women's Recurve Archery Team event at the Asian Games in Japan. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार ए आकाशवाणी खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरां देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नू उनां दी जन्म वरिगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है गांधी जयंती दे मौके ते अज देश भर विच विशेष ग्राम सभावां होणगियां शहरी हवाबाजी मंत्रालय ने हवाबाजी सुरक्षा प्रक्रियावां नूं सरल ते तेज करन लई कई सुधार शुरू कीते साउदी अरब ने तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई दी उड़ान च हमला करन वाले ओमानी सह पायलट नूं जांच लई संयुक्त अरब अमीरात दे हवाले कर दित्ता है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण हल लभण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे विचार बेहद चंगे ने ते भारतीय औरतों की रिकर्व तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेडा विच अपना पहला सोने का तमगा जीत के इतिहास रच दिता है हुण खबरां विस्तार नाल पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं उनां दे 157वीं जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है
3: वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई
2: इस मौके ते देश भर विच अते विदेशां विच भारतीय मिशनां वल्लों भी कई प्रोग्राम कराए जा रहे ने गांधी जयंती दे मौके ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं उनां दी 157वीं जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कीती उन्हां कहा कि महात्मा गांधी दे जीवन अते आदर्शां दा दुनिया भर विच सत्कार कीता जांदा है राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया दे कई हिस्सियां विच जंग अते टकराव दे संदर्भ विच गांधी जी दा शांति अते अहिंसा दा संदेश पहलां नालों किते ज्यादा प्रासंगिक हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती दे मौके ते नवी दिल्ली विच गांधी जी दी समाधि राजघाट विखे फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती राजघाट विखे एक सर्व धर्म प्रार्थना सभा हो रही है इस मौके गुजरात विच कई समारोह हो रहे ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पोरबंदर विच महात्मा गांधी जी दे जन्म स्थान कीर्ति मंदिर विच एक प्रार्थना सभा विच शामिल होंगे अहमदाबाद दे साबरमती आश्रम विच एक सर्व धर्म प्रार्थना कीती जाएगी राजभर विच एक वड्डे पद्धर ते स्वच्छता मुहिम विच चलाईयां जाणगियां

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
0: यानी कि झांजरा दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरा दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे।

0: कस्टमर केयर कितने है? हाँ मैडम।
1: हाँ जी।
0: एक केवाईसी अपडेट ले मैंने वार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवा वाले निर्धारित समय ते केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर होवेगा कि नहीं?
1: जेकर पहचान जा पते विच कोई बदलाव नहीं है ता अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी को जाके जा बैंक ना रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर आही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप आही जा पत्र आही उसकी डिक्लेरेशन दियो।
0: अच्छा ते जेकर कोई बदलाव होंदा है ता
1: फिर पहचान अते पते दा नवीनतम सबूत देके केवाईसी अपडेट करवा सकदे हो।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट करवाउन ले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
2: और ये कहता है
1: जानकार बनो सचेत रहो।
3: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। महक पंजाब दी इस प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
2: आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र ए न्यूज़ हेडलाइंस पेश ने मुख खबरां।

देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नूं उनां दे 157वें जन्म दिहाड़े ते याद कर रहा है। गांधी जयंती मौके राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी जी का शांति ते अहिंसा का संदेश दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे जंग ते टकराव के माहौल में होर भी प्रसंगक हो गया है। गांधी जयंती ते अज देश भर च विशेष ग्राम सभावां होणगियां। राष्ट्र अज साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नूं भी उन्हां दी 122वीं जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी दा लोक पक्षी भारत सरगर्म ते चंगे शासन दे सिद्धांतां नाल अगे वध रहा है। केंद्रीय व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के खुराक ते सुरक्षा उपावां नूं उजागर कीता है ते नेम आधारित बहुपक्षी व्यापार प्रणाली प्रति देश की वचनबद्धता की पुष्टि की है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ने पंजाब के नंगल विच विश्व हिंदू परिषद आगू विकास प्रभाकर के कतल के इल्जाम के संबंध च हरविंदर कुमार उर्फ सोनू बरनाला नूं भारत वापस लियाउण विच सफलता हासिल कीती है। पंजाब ने सितंबर 2026 दौरान GST प्राप्ति विच साल दर साल 22.11% का मजबूत वाधा दर्ज किया। SGST संग्रह 870.82 करोड़ रुपए होया जो कि देश विच सब तो वध है। पंजाब भाजपा के सबका प्रधान अश्विनी शर्मा ने सूबा सरकार तो फिरोजपुर विच प्रधानमंत्री आवास योजना तहत मकान अलाट करन विच कथित रिश्वत दे इल्जामां दी निरपक्ष जांच दी मंग कीती है। खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उच्च पदरी मीटिंग दौरान PSPCL मुलाजमां दीआं मंगां दी समीक्षा कीती ते जायज़ मंगां नूं पहल दे आधार ते हल करन दे निर्देश दित्ते। पंजाब च आश्रित ते अनाथ बच्चों लई मौजूदा माली साल 2026-27 दौरान हुण तक करीब 218 करोड़ रुपए की माली सहायता जारी की जा चुकी है। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत पंजाब पुलिस ने हुण तक 81,107 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार किया है ते 4,161 किलोग्राम हैरोइन बरामद की है। न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्र है। आओ सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। आज के इस प्रोग्राम में तुसी रत्नाकर व्यास का राग नट भैरव च ख्याल सुनोगे।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। आओ हुण कुछ गज़लां सुनदे आं। सब तो पहला सुनदे आं गुलाम अली दी आवाज़ च गज़ल।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक दोस्त इस वेले फोन लाइन दे मौजूद ने 0181-243-42173 मिला के आए ने। हेलो,
2: नमस्कार गुरबानी सिंह जी।
1: जी नमस्कार जी। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ते हुण दसो अपना नाम पता ग्रां दस दियो सब तो पहला।
2: पिंड कड़ियाणा कुलदीप चंगड़िया जी।
1: जी चंगड़िया साहब, हुण तुसीं दसो वी गीत किहड़ा तुहानूं सुना दीए।
2: मेरा गौ मेरा देहदा है शर्माऊं, किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियां।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा।
2: धन्यवाद संदी जी।
1: सो इस संदोस्त जिहड़े के फरमाइश जिन्होंने दर्ज करवाई है, लो सुनदे हां जी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म दा लता मंगेशकर दी आवाज दे विच गीत।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
2: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
4: दोस्तों हैलो फरमाइश का, जो तुम भी हिस्सा बनना चाहते हो 0181-23-42-173 नंबर मिला के जरूर पहुंचे। एक दोस्त ने हैलो हैलो कर दिया उन्होंने नाल। हैलो बहुत सोहना हो गया ना, वफादार जिहा हो गया। गीत केड़ा सुनना जी, तुसी दसो।
5: गीत जी दिल वाले फिल्म दा सुना दिया जी।
4: केड़ा गीत सुना दिए जी?
5: कुमार सानू दी आवाज
4: दे विच कितना हसीन चेहरा है जी। बहुत शुक्रिया दोस्त फोन करन दे लई, धन्यवाद।
5: धन्यवाद जी, धन्यवाद।

0: जी दोस्तों, हैलो फरमाइश प्रोग्राम आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो तुसी सुन रहे हो। एक दोस्त ने हैलो
1: हैलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी।
1: सर जी मैं पॉल बोलदा सराबा नगर जलंधर तो जी।
0: हां जी पॉल जी, की हाल चाल ने?
1: हां जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है, तुसी अपने सुनाओ जी।
0: बहुत बढ़िया जी, बस इदां ही कदे कदे वधिया हुंदा जी मिलना, है ना?
1: हां जी हां जी, बहुत टाइम हो गया जी तुहानू मिलिया नूं।
0: हैलो हैलो हो जानी चाहीदी है।
1: ਸਾਨੂੰ

0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा है कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक उपयोगी हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि आज दुनिया में हिंसा बढ़ रही है और ऐसे समय में महात्मा गांधी का अहिंसा और भाईचारे का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को आसान और तेज बनाने के वास्ते कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबुधाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदा सिद्धू ने कहा है कि कनाडा ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के अवसर पर श्री सिद्धू ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के प्रयास दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 70 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी दाए जलंधर केंद्र है।

0: हुणे तुसीं प्रोग्राम सुन रहे सी हलो फरमाइश। आकाशवाणी का यह जलंधर केंद्री इस वेले 11 बज रहे ने। आओ हुण सुनदे हां हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिआं जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी और विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान तक आगे बढ़ाया है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक उपचार के बाद अब उन्हें अबू धाबी भेज दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 11 मेट्रो स्टेशन अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, INA, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस, INA, नई दिल्ली और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर मेट्रो की इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाई ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जिए को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी में भारत ने रजत पदक जीता। कुमकुम महोद और धीरज बोमा देवरा की जोड़ी ने चीन से 3-5 से हारने के बाद रजत पदक हासिल किया। भारत की नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 70 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 12:05 हो चुके ने। हुन पेश है प्रोग्राम वसदे विड़े

0: नमस्कार।
1: प्रोग्राम बसते वड़े लेके अर्चना हाजिर
0: ते अर्चना दे नाल नाल अलका भी हाजिर। होर सुनाओ अर्चना जी, की हाल चाल ने?
1: भाई हाल चाल ठीक ने। जदों असीं अपनी दिनचर्या दी गल करदे हां।

0: 1922 तक चलाया गया। विदेशी माल का बायकाट, सरकारी सेवावां का बायकाट इस अंदोलन का हिस्सा सी, जिस नाल ब्रिटिश सरकार की नींह हिल गई। यह अंदोलन पूरे देश विच फैलिया अते सारा ही देश गांधी जी दे अहिंसक रस्ते नूं मनन लग पिया। पर चौरी चौरा दी हिंसक घटना तो बाद गांधी जी ने इस अंदोलन ते रोक ला दित्ती। अगला है नमक सत्याग्रह, जिन्हों असी डांडी मार्च दे नां नाल वी जानदे हां। अंग्रेजां ने नमक उत्ते टैक्स लाए हुए सन, जदकि इह ते कुदरती स्रोत सी। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 नूं साबरमती आश्रम तों डांडी तक 240 मील पैदल यात्रा करके आप नमक बना के नमक कानून की उलंघना की। हजारां लोग बेशक गिरफ्तार हुए, पर सरकार नूं अपने कानून विच नरमी अते तब्दीली लियानी पई। नमक सत्याग्रह ते आम लोगों नूं आजादी लहर नाल जोड़िया गया। पंजवां अंदोलन सी भारत छड्डो अंदोलन 1942। महात्मा गांधी द्वारा दूजे विश्व युद्ध दौरान 9 अगस्त 1942 नूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे बंबई सैशन विच शुरू कीता गया एक अंदोलन सी, जिस विच भारत विच ब्रिटिश शासन दे अंत दी मांग कीती गई। इस अंदोलन करके गांधी, नेहरू अते होर सारे आगू गिरफ्तार कर ले गए। देश भर विच अहिंसक प्रदर्शन होए, कई थावां ते हिंसा भी हुई। यह अंदोलन आखरी वड्डी लहर सी जिसने ब्रिटिश राज दी बुनियाद नूं हिला के रख दिता। गांधी जी दे इस सारे अंदोलन सिद्ध करदे हन कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तां आत्मिक ताकत है जो लोकां दे दिलां नूं जित्तण दी समर्था रखदी है। उन्होंने दस्या कि हिंसा दे लाभ स्थाई नहीं हुंदे, पर अहिंसा दी प्राप्ति सदीवी हुंदी है। महात्मा गांधी दे अहिंसा सिद्धांत ने केवल भारत नूं ही नहीं सगों पूरी दुनिया नूं प्रभावित कीता। अमरीका दे मशहूर नेता मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा सी कि नस्ली भेदभाव विरोधी लहर की प्रेरणा उन्हां नूं गांधी जी तों मिली। नेल्सन मंडेला ने भी दक्षणी अफ्रीका विच गांधी जी दे अहिंसक सिद्धांतां दा पालन करके अपारथाइड सिस्टम दा खात्मा कीता। ए सिस्टम रंग भेद दी नीति ते आधारित सी। गांधी जी दे अहिंसा अते सत्याग्रह दे सिद्धांत अजिहे हथियार बने जो सब हथियारां तों प्रभावशाली सन। गांधी जी ए भी सिखाउंदे हन कि शांति दी शुरुआत स्वै अनुशासन तों हुंदी है। महात्मा गांधी दे सिद्धांत सिर्फ एक रणनीति नहीं सन, बल्कि जीवन जाच सन। उन्होंने आजादी दी लड़ाई नूं ना सिर्फ एक नवी दिशा दित्ती, बल्कि उन्हां दी सच्चाई अते धीरज जित दी कुंजी भी बने। आओ असी भी उन्हां दीआं सिक्ख्यावां तों प्रभावित होके अपनी जिंदगी विच अहिंसा, सच्चाई अते सहनशीलता नूं अपनाईए। धन्नवाद।
1: हुणे तुसीं सुन रहे सी वार्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ते उन्हां दे अहिंसावादी विचारां बारे, ते इहनूं पेश कर रहे सन हरनिंदरजीत कौर। उन्हां ने सानूं महात्मा गांधी जी बारे बड़े विस्तार नाल दस्या, ते सानूं उन्हां दे पाए हुए पुड़ियां ते चलना चाहीदा
2: जी।
1: ते अर्चना जी, हुण आपां वधिया अग्गे नूं, ते साडे स्रोते इंतजार कर रहे होणगे मनोरंजन दा, ते आओ सुणदे हां इक गीत।

0: सुनो पिंड वाले हो, केवाईसी अपडेट सुनेहे नू नजरअंदाज ना करो, अपना केवाईसी फौरन अपडेट करवाओ। जेकर पछाण जब पते विच कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक जा एटीएम जा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी कोल जाओ, जा बैंक नाल रजिस्टर्ड ईमेल जा मोबाइल नंबर राही जा मोबाइल बैंकिंग ऐप राही जा पत्र राही उसकी स्वै घोषणा करो। ते जेकर कोई बदलाव है ता पछाण अते पते दा नवीनतम सबूत दिखाओ, खाता घर छीन रखो अते बैंकिंग सेवावां दा लाभ उठाओ। अपना केवाईसी अपडेट करवाउण लई अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कैंप जा बैंक शाखा ते जाओ।
1: आरबीआई कहिंदा है,
2: जानकार बनो सुचेत रहो।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज।
4: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक्त

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵੇੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि इस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोरिसे के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कई सांसद, संसद के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्यार्थियों ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाओ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले मैरीकॉम ने 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के नेत्रा कुमानन ने एशियाई खेलों में महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर एशियाई खेलों के लिए 65 किलोग्राम फाइनल में जगह पक्की की। भारत पदक तालिका में 71 पदक के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 34 कांस्य पदक शामिल हैं। महात्मा गांधी जयंती के कारण आज भारतीय शेयर बाजार बंद है। बाजार सोमवार को फिर से खुलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी दाए जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:05 हो चुके ने। आहुन जान दे आं अज रात तक दे बाकी रहंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा। दोपहर 1:15 ते प्रोग्राम पेश कीता जाएगा फौजी वीरां लई। दोपहर 2:03 ते रंगली धरती प्रोग्राम दे विच आज दे लोक गायक होणगे मनमोहन कौर। शाम 4:02 ते बीबी नूरा दे गाए सुफियाना कलाम तुसी सुन सकोगे। शाम 4:30 तुसी सरवन करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण। शाम 5:30 तुसी सरवन करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार। शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जिस विच होणगियां कम दियां गल्लां। हाड़ी फसलां दी काश्त बारे जानकारी देंगे डॉक्टर मनप्रीत सिंह। शाम 7:10 ते दिल्ली तों प्रोग्राम पेश कीता जाएगा जन सेवा से देश सेवा। शाम 7:45 ते सब रंग प्रोग्राम तहत तुसी सुनोगे उर्दू तकरीर मलिकाए गजल बेगम अख्तर फनो शख्सियत खातिब होंगे मोहम्मद।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले दोपहर दे 1:10 होण जा रहे ने। हुण तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।
4: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं अज उन्हां दी 107वीं जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। कौमी राजधानी विच महात्मा गांधी समाधि राजघाट ते एक प्रार्थना सभा करवाई गई, जिस विच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की ते राष्ट्रपिता नूं फुल मालां भेंट कीतियां। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजघाट ते महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट की। नवी दिल्ली के संविधान सदन विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोक सभा स्पीकर अते कई केंद्रीय मंत्रियों ने महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीतियां ने। भाजपा प्रधान नितिन गडकरी, कांग्रेस प्रधान अते राज्यसभा विच विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी, संसद मैंबर, संसद दे सीनियर अधिकारी अते स्कूली विद्यार्थी भी इस विच शामिल सन। पंजाब विच राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अते विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी दोहां महान शख्सियतां नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते ने। पंजाब सरकार वल्लों कायम 7 मैंबरी कोआर्डीनेशन कमेटी 6 अक्तूबर नूं चंडीगढ़ विच जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सत्कार सोध एक्ट 2026 दीआं मद्दां ते विस्थार नाल विचार वटांदरा करन लई मीटिंग करेगी। पंजाब सरकार दे एक बुलारे अनुसार कोआर्डीनेशन कमेटी कानून दे वख-वख पहलुआं ते विस्थार पूर्वक चर्चा करेगी अते श्री अकाल तख्त साहिब तों प्राप्त सुझावां ते विचार करेगी। विचार वटांदरे दा मुख केंद्र इह यकीनी बनाउणा होएगा कि कमेटी सामने रखे गए विचारां ते सुझावां ते विचार करदे समें कानून दी मूल भावना ते पवित्रता दा पूरा सत्कार कीता जावे।

जय हिंद फौजी वीरों, हर रोज की तरह आज भी असी हाजिर हो गए लेके थोड़े मनोरंजन लिए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। आज पूरे देश दे विच देश भगती की लहर छाई हुई है, सब दे उते इस देश की प्यार दा, इस देश की शरदा का जिहड़ा रंग है वह चढ़िया होया है, क्योंकि असी सारे ही जानते हैं कि अज गांधी जयंती है, लाल बहादुर जयंती है। तो देश दे विच तां कुछ

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए तां फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। तो फौजी वीरो अगला गीत थोड़े लई फिल्म अनुराग तो आवाज आ लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी दिया, गीत बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत एस डी बर्मन दा।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से, FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
2: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण अज तों 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 दी बजाए रात 8:30 प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
6: फौजी वीरो, एक बार फिर तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे अपने ही प्रोग्राम फौजी वीरां लई दे विच। ते आओ जी अगला गीत सुनदे हां, फिल्म मोहब्बत तो आवाज किशोर कुमार दी, गीत बोल इंदीवर दे ते संगीत

0: बॉबी को बताई और इस बारे में बताया कि किस तरह उन्हें हिम्मत मिली। वजीर आजम ने उनकी दिलेरी की तारीफ की, उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्ट्रेस हैं और मेरे से कौन करके मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में रोनुमा इस वाके में कैप्टन सुमित मछार पर हमला करने वाले मुआविन पायलट को अबू जबी मुंतकिल कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए ने सऊदी अरब की दाखिली उमूर की वजारत के एक ओहदेदार के हवाले से जानकारी दी है कि तिब्बी मंजूरी हासिल करने के बाद दोनों पायलट अबू जबी के लिए रवाना हो गए। अबू जबी में भारतीय सिफारतखाने ने कल जानकारी दी कि कैप्टन मछार को मुत्तहिदा अरब अमारात लाया गया और उनकी हालत में अब बेहतरी आ रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज बुध के रोज सुबह 9:45 पर तबूक में वाके शाह सुल्तान बिन अल अजीज बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर बहिफाजत उतरी थी। इस परवाज में 174 मुसाफिर और अमले के 8 अरकान सवार थे। इन तमाम अफराद को जरूरी लॉजिस्टिकल और तिब्बी मदद फराहम की गई। शाम 5:40 पर मुसाफिरों ने फ्लाई दुबई के एक दूसरे तैयारे में सफर किया जबकि जहाज का अमला एक दूसरी परवाज से वापस चला गया। जुमेरात के रोज दोनों पायलट यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के हमरा सऊदी अरब से अबू जबी के लिए रवाना हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यूएई की एक सिक्योरिटी टीम के तालमेल से सऊदी हुकाम की तरफ से की गई इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि जहाज के मुआविन पायलट और कैप्टन के दरमियान झगड़ा हुआ जिसके सबब दोनों अफराद जख्मी हो गए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीका के मिलवाकी में G20 बुतराए तिजारत की मीटिंग के मौके पर फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के अपने हमनसब वज़रा के साथ दोतरफा मीटिंग्स की। इन मीटिंगों में शामिल मुल्कों ने दोतरफा तिजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की। फ्रांस के गैर मुल्की तिजारत और इक्तसादी उमूर के वजीर के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा करने, भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे पर तेजी से अमल दरामद और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूपीआई के इंजमाम और मुश्तरका इख्तराई इकदाम समेत मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा तआवुन में मजीद इजाफा करने के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने कनाडा के बैन अल-अक़वामी तजारत से मुतालिक वजीर मनिंदर सिंधु के साथ एक मीटिंग की जिसमें भारत कनाडा जामे इक्तसादी शराकत दारी से मुतालिक मुआहदे सीपा पर जारी मुजाकरात का जायजा लिया। इस मुआहदे का आगाज मार्च के महीने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कनाडा के वजीर आजम मार्क कर्नी ने किया था जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा तजारत को साल 2030 तक 50 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाना है। सऊदी अरब के अपने हमनसब माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ मीटिंग में जनाब गोयल ने भारत और खलीज तआवुन कौंसिल GCC के दरमियान आजादाना तिजारती मुआहदे पर मुजाकरात और दोतरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात में मजीद मुस्तहकम बनाने के इम्कानात का जायजा लिया। जनाब गोयल ने जनूबी कोरिया के वजीर तिजारत पार्क जुंग सुंग के साथ भी मीटिंग की जिसमें भारत कोरिया जामे इक्तसादी शराकत दारी से मुतालिक मुआहदे, IKCPA की मुजवजा पेशरफ्त, मुतवाजन तजारती तरक्की और भारत की जरई फार्मास्यूटिकल और मरीन प्रोडक्ट्स की बेहतर मार्केट रसाई पर बातचीत हुई। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क और बैरून मुल्क भारतीय मिशनों में भी कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। कौमी राजधानी में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राजघाट पर महात्मा गांधी मेमोरियल पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और फूल नजर किए। वजीर आजम

नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजरा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, जितेंद्र सिंह और एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी सदर नितिन नवीन, कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, अरकान पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सीनियर ओहदेदार और स्कूली तलबा ने भी खिराज अकीदत पेश किया। आज ही साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के 122वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कौमी राजधानी में लाल बहादुर शास्त्री के मेमोरियल विजय घाट जाकर गुलाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है।

0: फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: की कहा तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया है, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
2: जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिलिया जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े बीएमसी चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार नहीं है।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: फौजी वीरो, अगला गीत पेश है तुहाडे लई फिल्म आए दिन बहार के तों। आवाज़ां आशा भोसले ते लता मंगेशकर दियां। गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दा।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:15 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का

0: अनुभव किया।
1: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सोचा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था। बट जान के मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था। अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए।
2: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण, यूपीआई के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
2: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के

0: मुगल सराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जुड़े है, एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60

0: हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3,000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।
1: मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स अकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा देंगे।
0: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। वेलाई प्रोग्राम रंगली धरती का सुनते हैं बस कुछ ही पलों च।
5: जापान के खेड मैदान हुण गूंजेगा एशिया का दम। खेडा दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडा का रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुमेगा जित का शिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडा की रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर के वक् वक् चैनल्स से FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स से। ये नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल से 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडा की पल पल की खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर से।
6: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण अज तो 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
4: आकाशवाणी जलंधर ते पेशे प्रोग्राम रंगली धरती। आज दे इस प्रोग्राम दे लोक गायक ने मनमोहन कौर।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच पंजाब दे 10 जिले जलंधर, शहीद भगत सिंह नगर, मलेरकोटला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मानसा, फिरोजपुर, मोगा अते फरीदकोट लई कॉन्ट्रैक्ट आधार ते पार्ट टाइम कोरेस्पोंडेंट्स दे अहुदे लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मंग कीती जांदी है। अर्जी फार्म लैण अते भेजण लई पता हेड ऑफ ऑफिस आकाशवाणी नेड़े BMC चौंक जलंधर ए। उम्मीदवार अर्जी फार्म समेत वधेरे जानकारी आकाशवाणी दी वेबसाइट www.newsonair.nic.in ते जाके वैकेंसी कॉलम तो भी डाउनलोड कर सकदे ने। अर्जियां भेजण दी आखरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 है। ध्यान रहे।

0: एक भी नियमित रोजगार नहीं है।
1: आकाशवाणी जलंधर से प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुन रहे हो मनमोहन कौर दे गाए लोक गीत

मास्टर तो अभिजीत गवहानकर रही, सरिता गवहानकर, प्रिंस आकाश गवहानकर, बहादुरपुर नागपुर ते बहादुरा, बहादुरपुर मुंबई तो सिद्धांत गवहानकर, प्रणीता गवहानकर, अर्जुन गवहानकर, टुक टुक इन्हों का घर का नाम ते आकार हादसा, बहादुरा नागपुर तो वैशाली शरीश गवहानकर, सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर, परी इन्हों का घर का नाम। लिखण वाले ने जी साधु शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान, अनारकली बाजार चकरा तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, शेष मल्होत्रा, बेबी गभरा मल्होत्रा, भाई सुचा पाठक, पिंड हिरन का पक्षी खोर, फरीदकोट तो है चिट्ठी, सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल, गुरलीन, सारा गिल परिवार। फरमाइश इन्होंने सारे दी संदीप बराड़ की खूबसूरत आवाज़।

सुप्रीम चेहरा चिट्ठी मीठा दे तुझे क्यों कहता है इरा यार तुम जा ते बिल्कुल जी आज दा दिन समर्पित है मैनुफैक्चरिंग दे विच काम करने लिए मनोज मनो ते मैनुफैक्चरिंग दे विच जेड़े काम कर दिया मशीनें ते काम कर दिया टेक्नोलॉजी दे बारे काम कर दिया उन्हें सम्मानित करन दा अज दा दिन है ते उन्हें दी मेहनत दे बदले उन्हें सम्मान देना साडा एक फर्ज है ते महला फतेहगढ़ है ते लुधियाना तो है चिट्ठी विनोद पुरी वी प्रांचू अशोकपुरी सुशीलपुरी बीके पुरी कैलाश अनीता ते ममता ते मेघा पूजा पुरी ते गगन कपूर गुंजन कपूर लालसा कपूर रमा मलिक कुणाल मलिक ते निधि मलिक हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पाली डीसी ते अरुणपुरी ते लिखण वाले ने जी पंचकुला सैक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान ते लव दीवान ते राधे भाविक ढिंगरा ते अतुल शर्मा जी भी इन्हां दे नाल इस चिट्ठी दे विच ते फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांधा इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत मनविंदर सिंह पांधा ते जी एस रामगढ़िया दतरेंकी छत्तीसगढ़ तो भागवत वर्मा ते लवई तो गुलाबदास मानकपुरी लक्षणपुर तो विश्वनाथ साहू ते चढ़ोंकरी पिपरिया तो दुर्गा राम साहू प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपेंद्र वरिंदर सिमरन कुलदीप एकम दमन अभिजोत लिख रहे ने चिट्ठी करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुचो कैंचिया बठिंडा तो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारती पायलट कैप्टन स्मिथ मछार नाल गलबात कीती। स्मिथ ने दुबई तो तेल अवीव जान वाली उड़ान ते कीते गए हमले नू नाकाम करके 180 लोकां दी जान बचाई सी। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नू उनां दी जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। पंजाब सरकार वालों कायम सत मैंबरी कोआर्डीनेशन कमेटी 6 अक्तूबर नू चंडीगढ़ विच जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार सोध एक्ट 2026 दियां मद्दां ते विचकार वटांदरा करन लई मीटिंग करेगी। पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीते दिनी पीएसपीसीएल मुलाजमा ते ठेका मुलाजम यूनियना दे वफदा नाल उच्च पदरी मीटिंगां दी प्रधानगी कीती। पंजाब विच बीएसएफ ने अज तरनतारन सैक्टर विच गैर कानूनी ढंग नाल भारत पाकिस्तान सरहद पार कर रहे दो पाकिस्तानी घुसपैठियां नूं गोली मार के ढेर कर दिता। पंजाब विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध एसआईआर दा 99.21 फीसद काम पूरा होण नाल इस दा समुच्चा अमल मुकम्मल होण नेड़े पहुंच गया। व्यापार अते सनत मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीका विच फ्रांस कनेडा साउदी अरब अते दक्षिणी कोरिया दे व्यापार मंत्रियां नाल व्यापारक संबंधां नूं मजबूत करन लई दुवलियां मीटिंगां कीतियां। कनेडा दे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है कि कनेडा ऊर्जा महत्वपूर्ण खनिजां अते एरोस्पेस खेत्रां विच भारत नाल मिल के काम करना चाहुंदा है। एशियाई खेडां विच मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम वर्ग विच इतिहास रचदियां सोने दा तमगा अपने नां कीता। इस सन हुण तक दियां मुख खबरां। ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनोगे सुफियाना कलाम बीबी नूरां दी आवाज़ च।

सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। बाबा नानक जी की इस रचना का गायन किया सी डॉक्टर गुरनाम सिंह होरां दे रागी जत्थे ने। नाम की मौजूदगी आदर्शक जीवन का आधार है ते नाम की गैर मौजूदगी वड्डा दुखांत है। राग सोरठ विचली बाणी रचना दे इस श्लोक विच तीसरे गुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी सुचेत करते ने कि गुरमुख जना नूं इह प्रतीत हुंदा है कि माया दा मोह विनाशकारी है। माया ऐसा

दंतनी है जिसने बगैर दंदा तो ही संसार नू खा लिया है। मनमुख इस विच गलतान हो गए ते गुरमुख इस दा शिकार होण तो बच गए। जिन्होंने सच्चे नाम नाल चित ला लिया, नाम तो बिना संसार कमला होया फिरदा है। सिर्फ गुरमुख ही नाम जपन करके प्रभु कृपा दे पात्र बन गए। दूजे पासे मन दे पिछे लगन वाले मायावी बंधना विच गलतान हो के अपना जन्म नेफल ही गवा दिंदे हन। सुखां दे दाते नूं चेते ही नहीं करदे, पर यह भी यकीनी है कि प्रभु दा नाम उन्हां वडभागे जीवां नूं मिलदा है जिन्हां दे कर्मां विच धुर दरगाहों ये लेख लिखिया हुंदा है। निम्रता दे पुंज सतगुरु अमरदास जी फरमाउंदे ने, बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया, तंदा करत्या नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन न वसाया। इस शब्द का गायन किया भाई अनूप सिंह अते उनादे रागी जत्थे ने।

0: बिन नावे जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया, तंदा करत्या नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन न वसाया। इस शब्द का गायन किया सी भाई अनूप सिंह अते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसविंदर सिंह दर्दी।
1: जन्म समय तो ही माया मनुख ते अपना प्रभाव पांदी है। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी का पावन बचन कि लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। जन्म तो पहला बच्चे दी परमात्मा दे नाल एक रस लिव जुड़ी सी, पर जन्म हुंदिया ही ये लिव टुट गई अते तृष्णा लग गई। शरीर दे बाकी तमाम रोग जेकर इलाज ना कीता जाए मनुख दे शरीर नूं मौत वाले पासे लै जांदे ने। पर तृष्णा एक ऐसा रोग है जेड़ा मौत भी पला दिंदा है। पातशाह जी दा पावन बचन असीं पढ़ने आ, ये तृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनो वसारिया। माया दा काम ही है निरंकार नालों तोड़ना अते संसार नाल जोड़ना। जो भी चीज़ मालक नालों तोड़ के दूजियां चीज़ां नाल जोड़े उसे दा नाम ही माया है। जिमें धन दौलत धियां पुत्र जमीन जायदाद परिवार ये सब माया है अते ये परमात्मा दे नालों तोड़दे हन। पातशाह जी दा पावन बचन कि माया है की है, माया किसनों आखिए क्या माया कर्म कमाए, दुख सुख ए जियो बद है हउमै कर्म कमाए। पातशाह जी कहिंदे ने माया दे कारण ही मनुख दे अंदर हउमै आउंदी है। सतगुरु जी पावन श्लोक अंदर बख्शिश कर रहे ने, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। माया अपनी ममता द्वारा मनुख नू ऐसा मोह लेंदी है कि मनुख नू पता ही नहीं चलता कि कदों ये माया दी गिरफ्त विच आ जांदा। फिर एक नहीं दो नहीं सारा संसार ही इसने अपनी पकड़ विच लिया होया है। ये बिना दंदा तो ही जगत नू निकलती जा रही है। पर की कोई ऐसा है जो इस माया दे प्रभाव तो बच सकिया होवे। साहिब जी अगलियां पंक्तियां विच बख्शिश करदे ने कि जो गुरमुख गुरु दी शरण विच रहण वाला है वह बच जांदे ने, मनमुख इस दी पकड़ विच आउंदे ने। साहिब जी दा पावन बचन है, मनमुख खादे गुरमुख उभरे। उभरे दा अर्थ है बच गए। मनमुख खादे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया। जिन्ना प्रभु दे प्यारिया ने सदीवी रहन वाले परमात्मा दे नाम दे नाल अपना चित जोड़िया होया है वह माया दे प्रभाव हेठ कदी नहीं आउंदे। बिन नावें जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया। माया दे प्रभाव करके मनुख परमात्मा दे नाम नालों टुट गया। नाम नालों टुट

दात प्राप्त होंदी है। मागव दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरा संग ना चाले मिला कृपा गुण गाम। सरन कर दिया बीबी अजीत कौर नीलम सानी अते कमल हंसपाल होरा द्वारा गायन किया हुआ ये शब्द।

मागोदान ठाकुर नाम अवर कछु मेरा संग न चाले मिला कृपा गुणगाम। इस शब्द गायन की तसी बीबी अजीत कौर, नीलम सानी अते कमल हंसपाल होरा ने।

गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम के प्रायोजक सन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:00 हूँ तुम सुनोगे हिंदी च समाचार साढ़े दिल्ली

0: ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार से बात की। कैप्टन स्मित मच्छार ने दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने श्री स्मित के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात,

0: कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना में स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है। श्री सोनोवाल ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यक्रम में ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुंबई पोर्ट अथॉरिटी द्वारा संचालित जवाहर द्वीप मरीन ऑयल टर्मिनल को प्लास्टिक मुक्त ऑयल टर्मिनल घोषित किया गया। गोवा सरकार के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पोंडा में आत्मनिर्भरता, कृषि और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गोवा में लगभग 6000 लखपति दीदियों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी को मजबूत करेगा और किसानों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। श्रीमती सीतारामन ने आज अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले में रायलसीमा वैश्विक बागवानी केंद्र परियोजना और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने किसानों को सहयोग देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर भी बल दिया। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 30-35 कांस्य सहित 76 पदक लेकर आगे है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक विजेता परवीन हुड्डा और सुजीत कलकल को उनकी जीत पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अस आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 6:05 हो रहे ने। हम पेशी प्रोग्रामा दा फेरफार।

0: शत वर्ष के 10 घंटे जन सेवा से देश सेवा ए प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। सत वज के 45 मिनट ते उर्दू प्रोग्राम सबरंग च उर्दू तकरीर सुनोगे मलिकाए गजल बेगम अख्तर फनो शख्सियत खातिब मोहम्मद सादिक। रात 8 बजे गांधी जयंती ते रेडियो रिपोर्ट सुनोगे। आठ बज के 10 मिनट जन सेवा तो देश सेवा दे तहत पेश विशेष प्रोग्राम पद्म अवार्ड्स। इस प्रोग्राम नू आकाशवाणी बठिंडा ते आकाशवाणी पटियाला भी नालो नाल प्रसारित करनगे। आठ बज के 4 मिनट पंजाबी गीत सुनवाया जावेगा। सवा 9 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम तुसी सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो। रात 9:30 बजे रूबरू प्रोग्राम च रंगमंच ते फिल्मा दी कलाकारा जतेंद्र कौर नाल होई मुलाकात सुनवाई जावेगी। मुलाकाती होंगे सुखजीत कौर। रात 10 बजे वीवीआ एशियन खेडा दिया मुख चलकियां साडे दिल्ली केंद्र तो पेश कीतियां जानकियां। दस बज के 20 मिनट तुसी सुनोगे हिंदी गीत। रात 10:30 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम सरगम। रात 11:10 प्रोग्राम सौगात तुसी सुनोगे डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा ते जलंधर केंद्र तो। सो एसी जी अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तो वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानने लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक वक चैनल्स दे एफएम रेनबो प्राइमरी चैनल डीआरएम ते डीटीएच चैनल्स दे। इहदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे एफएम रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
0: श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक

तो कुछ समय बाद यानी शाम 6:30 बजे पेश करांगे देहाती प्रोग्राम। अज इस विच काम दियां गल्लां, अज दे पा, कल दे प्रोग्राम, मौसम दे हाल ते गीत संगीत दे नाल नाल हाड़ी फसलां दी काश्त बारे डॉक्टर मनप्रीत सिंह जानकारी देणगे।

0: पंजाबी खबरां हुन शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਗਾਨ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई दे भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मचार नाल हस्पताल विच गल कीती अते उन्हां दी बहादुरी दी शलाघा कीती। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। जलंधर पुलिस ने फगवाड़ा दी लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी अते पटियाला पुलिस ने राजपुरा दी चितकारा यूनिवर्सिटी विच हाल ही च हुई गड़बड़ी दे संबंध विच कुल 11 लोकां नूं गिरफ्तार कीता है। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने तपदिक विरुद्ध लड़ाई नूं लोक लहर बनाउण दा सदा दित्ता है। एशियाई खेडां च भारत दी औरतां दी हॉकी टीम ने फाइनल विच चीन नूं 1-0 नाल हरा के सोने दा तमगा जित्तिया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज दलेर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मचार नाल हस्पताल च गलबात की थी। उन्होंने दुबई तो तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान दौरान आपने सह पायलट वालों किए गए हमले नु नाकाम करके 180 लोगों की जान बचाई है। कैप्टन मचार ने प्रधानमंत्री नाल आपने तजर्बे बारे वेरवे सहित गलबात की थी अते दस्या कि उस घटना दौरान उन्होंने किस चीज तो हिम्मत मिली। प्रधानमंत्री ने उन्होंने दलेरी की लागा कीती अते उन्हां दे छेती सेहतयाब होण दी कामना कीती। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उन्हां दी तंदुरुस्ती लई प्रार्थना कर रहा है।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
0: गलबात दौरान भावुक कैप्टन स्मित ने दस्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सब तो वड्डे आदर्श ने। प्रधानमंत्री का फोन आउन ते उन्होंने खुशी अते माण महसूस किया। देश अज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं उन्हां दी 157वीं जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी विच बापू दी समाधि राजघाट विखे एक सरब धर्म प्रार्थना सभा कराई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज सवेरे सरब धर्म प्रार्थना विच शिरकत कीती अते राष्ट्रपिता नूं फुल्लां नाल श्रद्धांजलि भेंट कीती। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजघाट विखे महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। नवी दिल्ली दे संविधान सदन विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर अते कई केंद्रीय मंत्रियों ने महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। भाजपा प्रधान नितिन नवीन, कांग्रेस प्रधान अते राज्यसभा विच विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी, संसद मैंबर, संसद दे सीनियर अधिकारी अते स्कूली विद्यार्थी भी इस मौके मौजूद सन। पंजाब विच पंजाब दे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अते विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संगदवा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अते साबका प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी नूं श्रद्धा दे फुल भेंट कीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के अपने 138वें एपीसोड विच पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर दी सूबे दे पिंडां विचों खेड हुनर दी नूं खोजण अते कोचिंग देण दीआं उन्हां दीआं कोशिशां लई तारीफ कीती। पिंडां विच बच्चियां नूं हॉकी दी सिखलाई देण लई राउंड क्लास हॉकी अकैडमी राहीं अपने जनून नूं अग्गे वधाउण लई उन्हां दी शलाघा करदे होए प्रधानमंत्री ने कहा कि राजेंद्र जी दा उन्हां बच्चियां दी पछाण करन विच बेहद स्पष्ट ध्यान है जिन्हां नूं पिंड पद्धर ते शानदार कोचिंग सहूलतां दी पहुंच नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 दे ओलंपिक विच सोन तगमा जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम दा हिस्सा सन। उन्होंने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 1982 दी चैंपियंस ट्रॉफी विच खेडिया सी, जिस नूं भारत ने राजेंद्र सिंह वल्लों 3 पेनल्टी कॉर्नर नूं गोल विच तब्दील करन नाल पाकिस्तान विरुद्ध जीत के कांसे दा तगमा प्राप्त कीता सी। ओह 1990 विच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई विच शामिल होए अते अपना कोचिंग करियर शुरू कीता। अपने कार्यकाल दौरान उन्हां वल्लों ट्रेन्ड सब जूनियर अते जूनियर हॉकी टीम ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। साई तो मुसीबत मुक्त होने तो बाद ये द्रोणाचार्य अवार्डी खिलाड़ी 2020 विच राउंड ग्लास स्पोर्ट्स एकेडमी नाल जुड़े अते नौजवान पेंडू प्रतिभा नूं राष्ट्रीय पद्धर दे खिलाड़ी बनाउण दे मकसद नाल सिखलाई देनी शुरू कीती। उन्हां आकाशवाणी नाल गलबात करदे दस्या कि वर्तमान विच राउंड ग्लास एकेडमी पंजाब विच 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिस विच 6 तो 8 साल दे कुड़ियां समेत 3000 बच्चे खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेड दीआं बारीकियां सिख रहे ने। ये ओलंपिक जो अपने हॉकी दे जनून नूं अग्गे वधा रहे ने, प्रधानमंत्री वल्लों उन्हां दे यत्नां दी शलाघा करन लई धन्नवाद कीता।
3: मैं प्रधानमंत्री जी दा बहुत बहुत आभारी हां जिन्हां ने मेरे बारे दस्या वी मैं किन्ना काम कीता एज ए ग्रास रूट।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी ए हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां।

0: कोशिश रही कि जेड़ी विरासत उन्हां दी झोली पई ओ उसनू अगली पीढ़ी तक सही रूप विच पहुंचाउण ते साडी कौमी पछाण वालियां पाएदार कदरां कीमतां नू अपने नाल जुड़े लोकां विच पुंगारन ते प्रफुल्लित करन लई योग माहौल सिरजन। देश दे अमीर विरसे दी चर्चा पिता जी अक्सर करते सन।
1: असीं खुशनसीब हाँ कि असीं एक अमीर विरासत दे वारिस हाँ। भगवान राम दा मुकम्मल चरित्र अज भी एक मिसाल है ते अज भी हर कोई चाहुंदा है कि उस दी संतान मर्यादा पुरशोत्तम वर्गी होवे। अज भी त्याग साडे जीवन दा अनिखड़वां अंग है। भगवान कृष्ण द्वारा दर्शाए कर्म दे मार्ग ते चलना अज भी साडा सभना दा फर्ज है। महात्मा बुद्ध वांग साडा जीवन मकसद भी सच दी तलाश है। अशोक महान ने जेकर उदों अमन शांति दा राह चुनिया सी तां साडे द्वारा आधुनिक भारत दी बुनियाद भी इसे महान सिद्धांत ते रखी गई है। गुरु नानक देव जी दी सिख्या ते चलदिआं सारे सरबत दा भला मंगदे हैं ते समुची मानवता दे भाईचारे दी दिलों चाहत रखदे हैं। साडे लई हर कोई अपना है ते असीं हर पासे सुख शांति चाहुंदे हाँ। असीं जिओ ते जीवन दिओ दा पाठ पढ़िया है ते इहो ही पढ़ाउंदे हैं। मूक खड़े होके जुल्म नहीं सहंदे सगों इस दे खिलाफ शांतमई ढंग नाल आवाज उठाउंदे हाँ। अपनी विरासत दे इन्हां प्रमाणित असूलां दा आसरा लैके ही असीं अंग्रेजी साम्राज तों देश नूं आजाद करवाया सी।
0: गुलामी दी काली पैड़ी रात बहुत लमेरी हो गई सी। मेरे पिता जी उस वेले लाहौर विच एक कॉलेज दे विद्यार्थी सन जद मात भूमि नूं आजाद कराउण लई जद्दोजहद अहम मुकाम तक पहुंच चुकी सी। हर पासे वक्खो वक्ख सोचां आपो अपना रोल अदा कर रही सन पर मकसद इको सी, गुलामी दियां जंजीरां तोड़ के सुतंत्र वातावरण सिरजना। दूजे विश्व युद्ध की तबाही ने हर संवेदनशील मन नूं टुंबिया सी ते हथियारां दी ताकत नाल अमन स्थापित करन दे इरादे मूंह भार डिग पए सन। हाथ आई सी तो सिर्फ तबाही। पिता जी ने वख वख विचारधारावां बारे पढ़िया ते समझिया कौमी फर्ज दी आवाज उन्हां नूं वी पुकार रही सी। उन्हां नूं गर्म सोच, क्रांतिकारी रवैया, हथियारबंद विरोध बहुत कमजोर तरीके लगे। सब कुछ विचारन तो बाद उन्होंने गांधी जी का अमन शांति राही सत्यग्रह वाला रस्ता अपनाउण दा निर्णा लिया। अनेकां अदुत्तियां कुर्बानियां, विरोध दे विलक्खण तरीकियां ते खास तौर ते सत्यग्रह राही असी आजादी हासिल करन दा अपना टीचा प्राप्त कर लिया। सत्यग्रह अर्थात दृढ़ता नाल सच ते टिके रहना ते इस दे ढंग तरीके साडी विरासत दा हिस्सा रहे ने। परंतु गांधी जी ने एक कर्मयोगी होण दे नाते इन्हां मुढले असूलां नूं अमली जामा पहनाया ते इन्हां दी कारगरता नूं प्रमाणित कीता। इन्हां असूलां दी ताकत नाल ही उन्होंने सारे भारतवासियों नूं एकजुट कीता ते लताड़े जा रहे देशवासियों नूं एक वड्डी ताकत बना के खड़ा कीता। अणगिणत स्वै सेवकां दा रोल आजादी हासिल करन विच भी अहम सी ते राष्ट्र उसारी विच भी इन्हां जागृत लोकां ने वध चढ़ के हिस्सा पाया। महात्मा गांधी आप कर्मयोगी सन ते उन्होंने अनेकां साधारण लोकां नूं कर्मयोगी बनाया। अज जेकर एक पिंड दे स्कूल विच मास्टर जी विरसे बाबत सिक्ख्या दे रहे ने तां ओह वी देश उसारी दा काम कर रहे ने। शहर दे स्कूल विच इतिहास नूं सही रोशनी विच पढ़ाउण वाले अध्यापक भी बच्चियां नूं ठीक सेध दे रहे ने। कॉलेज विच सिक्ख्यक जदों कुछ गहराई नाल आजादी की गाथा बयान करते ने तां ओह नौजवान वर्ग नूं देश प्रति अपनियां जिम्मेदारियां बारे सुचेत कर रहे हुंदे ने। यूनिवर्सिटी विच प्रोफेसर साहिबान विद्यार्थियों विच आलोचनात्मक विश्लेषण करन दी समर्था उजागर करके देश चलाउण लई तैयार कर रहे हुंदे ने। इंज सही सोच, आजाद विचारधारा ते विकासशील सोचनी साडी विरासत नूं होर अमीर बनाउंदे ने। पिता जी भी सानूं अजिही सेध दिंदे रहे। रोजाना दी क्लासरूम सिक्ख्या दे रूप विच उन्हां दे उच्च विचार ग्रहण करन दा सुभाग तां सानूं प्राप्त हुंदा ही सी। इस तों इलावा उन्हां द्वारा चलाई जा रही यूथ क्लब सच दे वारिस विच गांधी जी ते उन्हां दी विचार चर्चा बारे विस्थार विच

0: अज भी हो रहा है। राष्ट्रपिता ने सच की ताकत नू ना सिर्फ पछाणिया सगों भारत वासियां नू इस राही ताकतवर बना के वेले की मंग नू पूरा किया। राष्ट्रपिता मगरों पिता जी ते उन्हां वर्गे अनेकां होर जागरूक लोकां ने इस विरासत नू अगे तोरिया। अज ना राष्ट्रपिता साडे दरमियान ने, ना पिता जी ते ना ही उन्हां वेले दे बहुते सुचेत लोग, परंतु उन्हां दी सही सोच अज भी सलामत है, जिउंदी जागदी है। पिता जी ते उन्हां वर्गे होर बहुत सारे लोकां ने अपने विद्यार्थियों ते बच्चियां नूं इह विरासत सौंपी ते इंज ही इह विरासत अगली पीढ़ी तक भी पहुंच चुकी है। इस अमीर विरासत दे पहरेदार चुफेरे मौजूद ने जीवन नाल भरे नौजवान, सच दे वारिस अज भी कारजशील ने। सच दे इना वारिसां दे मन विच कई सवाल ने, ता उना कोल कुछ जवाब भी ने।
1: सानू अपने बुनियादी असूलां नाल रिश्ता कायम रखन दी लोड़ है।
2: असी सच दे मार्ग तों कदे नहीं डगमगाउणा।
3: सानू निजी स्वार्थ तों उपर उठन दी लोड़ है।
4: असी राष्ट्र नू हमेशा निज तों उत्ते रखना।
5: सानू तंग नजरिया त्यागन दी लोड़ है।
6: असी सांची वालता नू अपनी ताकत बनाना है।
7: सानू हिंसा तो परहेज रखन दी लोड़ है।
8: असी नफरत नाल मुकाबला सिर्फ प्रेम नाल करना है।
9: सानू हर भारतवासी दी जरूरत नू समझन दी लोड़ है।
10: असी अपनी विरासत नू सदा रोशन रखना है।
0: सचमुच साड़ी विरासत रोशनी दी विरासत है, उस रोशनी दी जिस नाल अग्गे तो अग्गे मन रोशन हुंदे ने। ये विरासत कर्म दी विरासत है, उस कर्म दी जिहड़ा ना वधीकी करदा है ते ना चुप खड़ा वधीकी जरदा है। ये विरासत सच दी विरासत है, उस सच दी जिस नू तजर्बियां राही जिंदगी च अपना के प्रमाणित कीता जांदा है। ये विरासत अमन शांति दी विरासत है, उस अमन शांति दी जिस उत्ते विश्व दे हर नागरिक दा हक है। यह विरासत सादा जीवन उच्च विचार दी विरासत है। यह विरासत मनुखी अधिकारां ते स्वै पछाण दी विरासत है। यह विरासत तां रोशनी दा एक कारवां है, मशाल तो मशाल प्रकाशमान होण वाला सिलसिला, अगां वधदा मजबूत हुंदा जिउंदा जागदा।

0: हाँ जी संधू साहब जी
1: सुनिया जी
0: बिल्कुल सुनिया जी
1: हूँ गल इदा कि हूँ जिदा कहने भी भंडा भंडा दे कि भार जे आप सौनी सामभी है या सामभण की तैयारी करते पे हैं
0: व्योतबंदी पहले की बंदा नुकसान कदी नहीं करता अपना ना ही पैंदा नुकसान
1: ना हुंदा ही नहीं जी
0: हुंदा ही नहीं
1: सो हाड़ी फसलां दी किस तरीके वधिया काश्त कर सकते
0: हैं जी
1: अपने को डॉक्टर मनप्रीत सिंह खीवा हो रही आए सन
0: अच्छा जी
1: बहुत वधिया जानकारी दी है जी
0: अच्छा जी
1: लो सुनो फिर
0: सुनाओ जी फिर
2: किसान वीरो मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह फसल विज्ञानी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी तो लुधियाना तो अज असी हाड़ी दी जियां जड़ियां मुख फसल उन्हां संबंधी उन्हां दी काश्त संबंधी गल करांगे सब तो जिहड़ी मुख ते अहम फसल है जिहड़ी हाड़ी दी उह हैगी है कणक पंजाब दे विच इह 35 लाख हैक्टेयर एरिए दे उत्ते जिहड़ी इहदी काश्त कीती जांदी है सो जदों असी इन्हां फसलां दी हाड़ी दीआं फसलां दी काश्त करदे हां सब तो जरूरी जिहड़ा हैगा उह इहदे विच किस्मां दी चोण हैगी है पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा वल्लों जिहड़ियां कणक दे लई सिफारिश किस्मां ने उह है PVW 887 जिहड़ी कि नवीं वरायटी है जिहदा लगभग झाड़ 24.6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब के नाल है इस तरह ही पिछले सालों के मकबूल जिहड़ी किस्म हुई PVW 826 की सिफारिश की जाती है इस तरह ही जे हैप्पी सीड

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही है निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
3: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है,

0: कि हमारा विजन है, हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फोन हमेशा इंपोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल की पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज्यादा MSMEs हैं। तो MSMEs हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीजें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ चाहे आप वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रांग करें। तो चाहे आप डिजाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिजाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जाकर के जहां जहां स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में यूपी फॉर एग्जाम्पल लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहां पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहां पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीजों को बना रहे हैं।
1: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिजाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहां बन के आते हैं, किस जगह, ज्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूं बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूं, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयां अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहां उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीजें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज, तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक जगह अपनी बना ली है दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा

0: और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग जिनके अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था, आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है और वो युवा आज जो जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना, तो उसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं। यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है, कोई ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूं, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं, और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए तो बड़ा आसान है। मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी, और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है, उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है, और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग, ये चाइना ने ये करा बहुत साल पहले और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेसिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमईज का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चलिए मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में, उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल, एक पोटैटो है, अगर आप आलू का, अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा, बट एक आलू से जो चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है, वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे

0: छोटे जो उद्योग हमारे गांव गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े। वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें। वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके ये देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गांव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के जरिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है। तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें।
2: देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको दो शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं
1: जी।
2: एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है, और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखिए ना, जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% में काम कर रही है, उनके पास जगह भी है और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही है। आप हर साल कुछ कुछ समय बाद सुनते हैं, अब इसमें भी पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, अब इसमें भी लाई जा रही है, तो मुझे लगता है इसकी कामयाबी इस स्कीम को आगे बढ़ाने

0: में मदद कर रही है।
1: बिल्कुल, और आपने जो नौकरियों का उदाहरण दिया, शायद उसके जरिए हमारे श्रोताओं के लिए पीएलआई की आवश्यकता समझना बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आज के जमाने में जहां आज की जीवन शैली टेक्नोलॉजी पर निर्भर है और हमारी छोटी से छोटी चीज मोबाइल फोन से होती है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है? आज के जमाने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों है, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
0: जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन। क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है। कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी ले लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है। तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है। तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं घंटों में बदल रही है
1: जी।
0: इस युग में आज हम जी रहे हैं, तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए। और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसके अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047। मैं समझता हूं जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफी साइंस है, मैथ्स है एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे। तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के
1: बराबर
0: का हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि टीएसएमसी जो ताइवान की कंपनी है, जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, जब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है, उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था। ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में हैं, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं। तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर। अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूत

0: हो गए, तो मुझे प्रधानमंत्री जी के बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा। तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो, हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी है।
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस में हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
0: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में मशीन गन्स में लगते थे वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेके आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में, वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पर डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही है, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
2: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे कई आप देश आज चाहे आप चांद में देख लीजिए वहां जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए हैं, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
2: देखिए वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहां पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफर करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
0: मुझे लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का

0: वहां जाके जब ट्रेन्स में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कंफर्ट आया है, क्लीनिनेस आई है, एफिशिएंसी आई है और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहां से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहां ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका मैं ये भी कहना चाहूंगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के MSMEs के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें MSMEs की भी बहुत अहम भूमिका है।
2: बिल्कुल। देखिए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड MSMEs हुआ करते थे करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड MSMEs हमारे देश में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि GST लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक MSMEs को पूरा इसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से MSMEs को सपोर्ट किया, उसके बाद जो MSMEs की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनी है लेकिन उसमें MSMEs की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं तो हमारे देश के MSMEs उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल। और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
2: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
0: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है, हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूं, तो मैं इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग या भारत में GDP में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां दूं, बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: जी किया। बिल्कुल बिल्कुल।
2: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत, जो नया भारत आज भारत की पहचान है। भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की। और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-2, 3-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल। यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने।

0: के लिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

0: जन सेवा से देश सेवा ए प्रोग्राम तुसी हुणे सुन रहे सी साडे दिल्ली केंद्र तो असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 7:45 हो चुके ने। हुण पेश है उर्दू प्रोग्राम सबरंग च उर्दू तकरीर मलिकाए गजल बेगम अख्तर फनो शख्सियत खातिब मोहम्मद सादिक।
2: अजीज सामीन, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आपके पसंदीदा प्रोग्राम सबरंग में आप सभी का खैर मकदम है। मेरी आज की तकरीर का मौजू है मलिका गजल बेगम अख्तर की शख्सियत और फन। गीत, गजल, कव्वाली और दीगर असनाफ मौसीकी ने आज हमारे समाज में एक अहम मुकाम और खास जगह कायम कर ली है। तारीख शाहिद है कि इंसान के वजूद के साथ ही मौसीकी ने अपना वजूद कायम किया। वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां रूनुमा होती रही और इससे हर जमाने के लोग अपनी रूह की तस्कीन पाते रहे। आज शायद ही कोई ऐसा शोभा है जिंदगी या फिर इंसानी हयात का कोई पहलू बाकी हो जिसमें मौसीकी ने अपना मुकाम पैदा न किया हो। मौसीकी

वो बेगम अख्तर के फन से काफी मुतासिर हुए और उन्हें फिर से मुंबई आने की दावत दी। साल 1942 में महबूब खान की बनाई शाहकार फिल्म रोटी में बेगम अख्तर ने अदाकारी के साथ साथ बतौर गुलूकारा अपने फन और सुरीली आवाज से जौहर दिखाए। कई शाहकार फिल्मों के अलावा बेगम अख्तर ने चंद ड्रामों में भी अदाकारी की। एक अरसा के बाद अदाकारी से उन्होंने मुंह मोड़ लिया और अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ गुलूकारी की तरफ मरकूज कर दी। जल्द ही उनकी गजल गायकी अपने अरूज को पहुंची और रोज बरोज उनका सितारा बुलंद होता चला गया। बेगम अख्तर की गायकी के लिए 1940 के बाद का जमाना अरूज और कामयाबी का जमाना था। ये वो दौर था जब फिल्म रोटी के नगमों के बाद बेगम अख्तर की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने गजलों और ठुमरियों को अपनी गायकी से नया अंदाज भी अदा किया। उनकी सुरीली आवाज की धूम हर जानिब फैल चुकी थी। ये वो दौर था कि जब बेगम अख्तर की मुलाकात अपनी हकीकी मोहब्बत यानी बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से भी हुई। इश्तियाक अहमद अब्बासी असल में रहने वाले फैजाबाद के ही थे, मगर वकालत के सिलसिले में मुस्तकिल तौर पर लखनऊ में सकूनत पजीर थे। बेगम अख्तर इश्तियाक अहमद अब्बासी की शख्सियत से काफी मुतासिर थी, जिनसे उन्होंने 1945 में शादी भी कर ली। बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी के साथ अख्तरी बाई की शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद उनके गाने बजाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग गई। इश्तियाक अहमद अब्बासी चूंकि एक नाम निहात और खानदानी इंसान थे, इसलिए एक शरीफ खानदान की तरह उनका भी ख्याल था कि बहू बेटियों को घरों से बाहर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इस तरह अख्तरी बाई अब अपने घर को सजाने, संवारने और अपनी अज़दवाजी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर मसरूफ हो गई, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में मौसीकी और गायकी अब भी कायम पजीर रही। बेगम अख्तर शादी के बाद तकरीबन 5 बरस तक साज और आवाज की दुनिया से अलग रही, लेकिन लहन, साज और मौसीकी उनकी शरियानों में रच और बस गए थे। साल 1949 में बेगम अख्तर शदीद तौर पर बीमार हो गई, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी मायूसी का इजहार किया। लिहाजा उनके डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अगर इन्हें दोबारा गाने बजाने और मौसीकी की इजाजत दे दी जाए तो ये सेहतयाब हो सकती हैं। डॉक्टर के मशवरे पर शोहर इश्तियाक अहमद अब्बासी ने उन्हें गाने और बजाने की इजाजत दे दी, जिसके कुछ अरसा बाद बेगम अख्तर तंदुरुस्त हो गई और एक बार फिर से अपनी आवाज और साज के साथ मुंसलिक हो गई। अब एक बार फिर 1949 में बेगम अख्तर ने लखनऊ रेडियो स्टेशन से गजल गायकी के प्रोग्राम देने शुरू किए। बस फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद दीगर कई गजलों, ठुमरियों और दादरों में अपनी आवाज से रूप फूंकी, जहां उन्होंने भर भर आई मोरी अखियां और सैया गए परदेस जैसी ठुमरियां गाई, वहीं हमारी अटरिया पे आओ कोयलिया मत करो पुकार, बलुआ तुम क्या जानो प्रीत और कटे न बिरह की रात जैसे दादरे भी पेश किए। बेगम अख्तर की मकबूलियत को देखते हुए उन्हें दोबारा बतौर अदाकारा फिल्मों में काम करने की पेशकश भी आने लगी। अलबत्ता मौसीकार मदन मोहन की सिफारिश पर साल 1953 में बनी दाना पानी और साल 1954 में बनी एहसान फिल्म में अदाकारी के साथ साथ गजलें और गीत भी गाए। साल 1958 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म जलसा घर में भी बेगम अख्तर ने काम किया। बेगम अख्तर ने अपने इब्तदाई दौर में बहजाद लखनवी, मोमिन खां मोमिन और अख्तर की गजलों को खास तौर पर गाया। इनके अलावा जौक, मीर, गालिब, जिगर, फैज, शकील, सुदर्शन फाकिर, शमीम जयपुरी, फाखिर यहिया और कैफी आजमी के साथ साथ कई दीगर शोरा की तख्लीकात को भी अपनी जादुई आवाज से लबरेज किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मशहूर और मकबूल शोरा की गजलें गाईं और इस तरह तकरीबन 400 से जायद गजलों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवाया। बेगम अख्तर की गजल गायकी में एक शफाफ और बंधी हुई सुरीली आवाज का एहसास होता है। उन्होंने बेशतर गजलों की धुनें खुद तैयार की और मुख्तलिफ रागों का इस्तेमाल करके अपनी गायकी को यादगार बना दिया। उनकी दिलकश आवाज में ऐसी शोलगी जागुजी है जो सामीन के दिलों को पिघला कर इसमें सोज भर देती है। यूं तो बेगम अख्तर को ठुमरी और दादरा गाने में भी कमाल हासिल था, मगर उनकी असल शनाख्त गजल गायकी के सबब है। गजल के अशार की अदायगी में उन्हें जो कमाल हासिल था वो अब तक शायद ही किसी दूसरे गुलूकार को हासिल हुआ हो। यही वजह है कि आज उन्हें मलके गजल के नाम से याद किया जाता है। कैफी आजमी उनके बारे में कहते हैं, मेरे नजदीक गजल के दो मायने हैं, एक तो लुगवी मायने यानी माशूक से बातें करना और दूसरे बेगम अख्तर। बेगम अख्तर की गाई हुई गजलों में से मशहूर

को याद करने का दिन है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। गांधी जी के जीवन और विचारों से हमें सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा की प्रेरणा मिलती है, लेकिन उनके विचारों में स्वच्छता का भी विशेष महत्व था। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता केवल हमारे घर तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे आसपास के पूरे वातावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मेरे विचार से गांधी जी का स्वच्छता संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। स्वच्छता केवल सफाई करने का कार्य नहीं, बल्कि एक संस्कार और जिम्मेदारी है। जब हम कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालते हैं, सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करते और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम वास्तव में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसी विचार को व्यापक जन अभियान का रूप देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया।

नहीं करते और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं, तब हम वास्तव में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इसी विचार को व्यापक जन अभियान का रूप देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस अभियान ने स्वच्छता को जन भागीदारी से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मेरा मानना है कि स्वच्छ भारत केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि हम सभी का साझा संकल्प है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने आसपास की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है, तभी स्वच्छता एक सशक्त जन अभियान का रूप लेती है। एक शिक्षक और संगीतज्ञ होने के नाते मैंने भी यह प्रयास किया कि संगीत के माध्यम से स्वच्छता और नागरिक जिम्मेदारी का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी उद्देश्य से मैंने स्वच्छ जालंधर, जालंधर को स्वच्छ बनाए गीत की रचना, संगीत बद्धता और प्रस्तुति की। मुझे यह बताने में प्रसन्नता होती है कि इस गीत को जालंधर की स्वच्छता मुहिम के ऑफिशियल एंथम के रूप में पहचान मिली है। मेरे लिए यह गीत केवल एक गीत नहीं, यह मेरे शहर के प्रति मेरी जिम्मेदारी और स्वच्छता के प्रति मेरी प्रतिबद्धता की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है।

0: मेरा विश्वास है कि संगीत सीधे हृदय तक और जब संगीत के माध्यम से कोई सकारात्मकता संदेश के रूप में लोगों को जागरूक और प्रेरित करने की अद्भुत शक्ति रखता है। एक शिक्षक के रूप में मेरा यह भी मानना है कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, हमें अपने विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार भी विकसित करने चाहिए जिनसे वे एक जिम्मेदार नागरिक बने, अपने समाज, अपने शहर और अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हम स्वच्छता को केवल किसी अभियान या विशेष दिवस तक सीमित न रखें, इसे अपने दैनिक जीवन की आदत और संस्कार बनाएं। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले, ना स्वयं गंदगी करेंगे ना गंदगी फैलने देंगे, अपने घर को स्वच्छ रखेंगे, अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे और अपने भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे।
1: आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सबको छावनी परिषद जालंधर की ओर से विनोद वर्मा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रभारी, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो एक पखवाड़े के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। छावनी परिषद इसमें सहभागी है। इस दौरान जो हमारे जहाँ जहाँ पर GVPs थे उनकी सफाई दशहरा ग्राउंड की हमने की है, और PGLs की स्पेशल सफाई हमने की है, गार्डन्स की स्पेशल मेंटेनेंस की है। लगभग 15,000 से 20,000 पेड़ों का रोपण हमने किया है और आगे भी ये प्रोग्राम अभी 17 अक्टूबर तक चलेगा। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि हम स्वच्छता की ओर अपने कदम बढ़ाएं।
2: आज असि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन बड़े उत्साह मना रहे हैं। उन्होंने सच, अहिंसा और सादगी नूं अपने जीवन का आधार बनाया। वह हमेशा सफाई और सेहत नूं सम्मानजनक समाज लई जरूरी मानते सन। इस संबंध में मेरिया कोई लाइना अभी सन्मुख पेश हाँ जी। गांधी जी का जन्म दिहाड़ा सानू यह संदेश सुनावे, साफ सुथरा देश बनाइए, हर मंदिर ज्योत जगावे।

0: गली मोहल्ला शहर सजाइए, कूड़ा कदे ना इधर उधर पाइए, गिला सुक्का कूड़ा वक करिए, स्वच्छता दी रीत अपनाइए, साफ हवा ते निर्मल पानी जीवन दी अनमोल निशानी, अपने घर तो शुरू करिए, सफाई बने साडी सब दी जिम्मेवारी, ना थुकिए ना गंद फैलाइए, दूजियां नूं भी सेध दवाइए, गांधी जी दे सुपने साकार करिए, स्वच्छ भारत मिलके बनाइए, सफाई सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन दी होवे पहचान, स्वच्छता सेवा ते सांझ नाल रोशन होवे हिंदुस्तान, रोशन होवे हिंदुस्तान।
1: एसी महात्मा गांधी जी जयंती ते आधारित रेडियो रिपोर्ट, सहायक सोनिया ते रविशंकर, पेशकश आकाशवाणी जलंधर। हुण तुसी सुन रहे सी रेडियो रिपोर्ट, असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। श्रोतियां दी जानकारी लई सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तों विशेष प्रसारण होण कारण 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्तूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवें प्रसारण समय दा ध्यान रखण। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ।

0: नहीं आया, पर वो अपना फर्ज समझते हुए बिना किसी हंकार जा झिझकते सफाई करते रहे।
1: मैं इना गड़िया पार्का जनतक थावा नु साफ करने की कोशिश करता हाँ, ताकि लोग ए देखन के इस उम्र च भी ए अपने खाली हथा नाल काम कर रहा है। सानू इस दे नाल जुड़ना चाहिदा है।
2: जदों इन्हां नूं पद्म श्री मिलिया ता ओही लोग जो मैनूं पुछदे सन, यार तेरे पिता जी की कर रहे ने, मैं उन्हां दे विहार विच तब्दीली देखी है, मैनूं सचमुच उन्हां ते माण है।
0: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्म श्री 2026, कोटी कोटी नमस्कार।
3: पर सवाल हुन ए पैदा हुंदा है कि ए वड्डा बदला आया कि नहीं, आखिर वो केड़ी चाबी सी जिसने राष्ट्रपति भवन दे बंद दरवाजे आम नागरिकां ने खोल दित्ते। इसका जवाब है डिजिटल इंडिया ते जन भागीदारी। पहला पद्म पुरस्कारां दी चोण प्रक्रिया बंद कमरियां विच हुंदी सी। कौन किसदा नां सिफारिश कर रहा है, किस आधार ते फैसला हो रहा है, ये किसे नूं नहीं सी पता हुंदा। पर सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in दी शुरुआत कीती। इस पोर्टल की खूबी यह है कि इसने नामजदगी दे अधिकार नूं आम जनता दे हाथ विच सौंप दिता। अज तुसी, मैं या कोई भी नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल फोन राही किसी भी अजे इंसान दी नामजदगी दाखिल कर सकदा है जिसने समाज लई निस्वार्थ काम किया होवे। तुहानू सिर्फ उस व्यक्ति दे काम दा वेरवा, कुछ तस्वीरां या सबूत अपलोड करने पैंदे ने। इसका नतीजा की निकला? नतीजा ए निकलिया कि पिछले कुछ सालां विच नामजदगियां दी गिनती कुछ हजारां तो वध के लखां तक पहुंच गई। ते सब तो खूबसूरत गल ए है कि हुण अणगौले हीरियां नूं लब्भण लई खुद सरकारी टीमां जमीनी पद्धर ते खोज करदियां ने। पीपल्स पद्मा ने देश दे नौजवानां दे सामने नवे रोल मॉडल खड़े कीते ने। अज दा नौजवान जदों अपनी उम्र दे आखरी पड़ा च पहुंच के भी निष्काम भाव नाल कुदरत दी संभाल करन वाले शख्सियतां नूं देश दे सर्वोच्च मंच ते सम्मानित हुंदिया देखदा है, तां उस दे दिल विच कुदरत प्रति अथाह प्यार जागदा है। जदों ओह देश दे दूर दुराडे बर्फीले या पछड़े इलाकियां विच बच्चियां दे भविख नूं रोशन करन वाले गुमनाम रहबरां नूं देश दा वड्डा नागरिक सम्मान लैंदे देखदा है, तां उस नूं समझ आउंदी है कि सफलता सिर्फ वड्डियां नौकरियां या धन दौलत दा नाम नहीं, सगों लोकां दी जिंदगी विच रोशनी भरन दा नाम है। अज लोड इस गल दी है कि असी भी अपने आले दुआले अखां खोल के देखिए। साडे मुहल्ले विच, साडे पिंड विच, साडे शहर दे किसी कोने विच कोई अजिहा निष्काम सेवक जरूर होएगा जो शायद पिछले कई दहाकियों तो चुपचाप समाज भलाई दे कम्मां च जुटिया होवे। कोई अजिहा वातावरण प्रेमी होएगा जो रुखां पाणियां नूं बचा रहा होवे, या कोई अजिहा दानी होएगा जो बेसहारा जिंदड़ियां दा सहारा बनिया होवे। ओह शायद कदे वड्डे शहरां तक ना पहुंच सकण, शायद उन्हां नूं ऑनलाइन फॉर्म भरना भी ना आउंदा होवे, पर ए तुहाडा ते साडा नागरिक फर्ज बनदा है कि जदों भी पद्म पुरस्कारां दीआं नामजदगियां शुरू होण तां सरकार वल्लों बनाए गए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ते असीं उन्हां दी प्रेरणादायक कहानी जरूर लिख के भेजिए, क्योंकि पीपल्स पद्मा दी ए शानदार सरकारी पहल उदों ही सच्चे अर्थां विच कामयाब होएगी जदों देश दे हर अणगौले नायक नूं उसदा बणदा सम्मान ते हक मिलेगा।

0: मैं तुझे सुन रसी, जनसेवा तो देश सेवा दे तहत विशेष प्रोग्राम पद्म अवार्ड्स। इस प्रोग्राम नू आकाशवाणी बठिंडा ते आकाशवाणी पटियाला नालों नाल प्रसारित कर रहे सन। अस आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव

जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। जापान दे खेड मैदानां विच हुण गूंजेगा एशिया दा दम। खेडां दे सब तों वड्डे महाकुंभ एशियन खेडां दा रोमांच हुण आकाशवाणी जलंधर तुहाडे तक पहुंचाएगा। कौन रचेगा इतिहास, कौन चुम्मेगा जित दा सिखर, भारतीय खिडारी किन्ने मैडल करनगे अपने नाम, ये सब जानन लई सुनो जापान च हो रही एशियन खेडां दी रोजाना रेडियो रिपोर्ट 19 सितंबर तो 4 अक्टूबर तक रात 10 बजे तो 10:20 तक आकाशवाणी जलंधर दे वक-वक चैनल्स दे FM रेनबो, प्राइमरी चैनल, DRM ते DTH चैनल्स दे। इदे नाल नाल अपडेट्स जानोगे FM रेनबो चैनल ते 20 सितंबर तो 3 अक्टूबर तक। एशियन खेडां दी पल-पल दी खबर सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

करना छुट्टी आदि 2030 तक 5 लाख बाल देखभाल केंद्र कायम करना शामिल है। कमीशन ने सिफारिशा मुलाजमा आदि सिखलाई विभाग औरता ते बाल विकास मंत्रालय आदि किरत रोजगार मंत्रालय नु सौंपिया। कमीशन ने गैर रस्मी गिग ते प्लेटफॉर्म मुलाजमा नु जनेपा ते बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की भी सिफारिश की है। कमीशन ने पाया कि 90% तो वध औरत मुलाजमान नु प्रभावशाली कवरेज तो बाहर रखा गया है। कमीशन ने मौजूदा औरता केंद्रित बाल देखभाल छुट्टी ढांचे नु मापिया विचों किसी एक लई उपलब्ध लिंग भेद रहित बाल देखभाल छुट्टी विच बदलने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट विच मौजूदा 730 दिनां दी बाल देखभाल छुट्टी नु दोवां कामकाजी मापिया विचकार बराबर वंडन की तजवीज है। इस विच हरेक नु 365 दिन मिलेंगे जां जिथे दोवे मापे इको संगठन विच काम करदे ने उत्थे इक सांझा पुल बनाउण तजवीज है। 0 to 2 साल की उम्र के बच्चों लिए रिपोर्ट मुढ़ले अते उन्हां तों बाद ते देखभाल करन वाले विचकार 60:40 के रूप में एक सांझे देखभाल मॉडल की भी तजवीज है। यह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नूं एक सार ते कानूनी तौर ते लागू करन योग अधिकार बनाउण की भी तजवीज रखती है। रिपोर्ट जैविक गोद लैण वालियां ते जन्म तो बाद दीआं मावां लई जनेपा लाभां विच समानता की भी सिफारिश करती है। इस विच गोद लैण वालियां ते जन्म तो बाद दीआं मावां लई छुट्टी की म्याद 12 हफ्तिया तो वधा के 26 हफ्ते करना शामिल है। व्यापार ते सनअत मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार खामियां नूं दूर करन लई विश्व व्यापार संगठन WTO मुताबिक दृष्टिकोण अपनाउण लई कहा है। श्री गोयल ने गल अमरीका दे मिलवाके विच G20 व्यापार मंत्रियां दी मीटिंग दे समाप्ति दिन कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया दी सब तो तेजी नाल वध रही आर्थिकता है जिसकी घरेलू मंग आधारित आर्थिकता 140 करोड़ लोगों दी जरूरतां नूं पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन तो लेकर तैयार वस्तां तक निर्माण मुल लड़ी बना रहा है जो कि विश्व सप्लाई लड़ी विच भरोसेयोग कड़ियां ने। श्री गोयल ने कहा कि भारत की निर्माण समर्था घरेलू और विश्व मांग नूं पूरा कर रही है। उन्होंने भी कहा कि भारत बहुत सारे मेंबर देशों की चिंतावां नूं सांझा करता है कि कुछ देशों वालों उन्होंने आर्थिकता नूं दित्ती गई अनुचित सहायता विश्व बाजार विच डंपिंग और नुकसान दे कीमत वाल ले जांदी है। उन्होंने कहा कि इन चिंतावां नूं हल करने लिए चुके गए कदम पूरी तरह सबूत आधारित और WTO नियमों के ढांचे अंदर न्यायिक समीक्षा के अधीन होने चाहिए ने। श्री गोयल ने स्पष्ट किया कि सप्लाई लड़ी नूं वन सुवन्ना बनाने के नाते WTO नियमों तो बाहर कोई भी एक तरफा कदम नहीं चुके जाने चाहिए। विज्ञान ते टेक्नोलॉजी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोबोटिक्स दवाई दे वख-वख खेत्रां विच इक अहम साधन बनन जा रहा है जिस विच तकलीफ दा पता लाउणा इलाज अते थेरेपी शामिल है। अज नवी दिल्ली विच सोसाइटी आफ रोबोटिक सर्जरी SRS दे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन विच बोलदिआं डॉ सिंह ने कहा कि रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI अते नैनो साइंस सटीकता अते व्यक्तिगत सेहत संभाल लई इक इकोसिस्टम बनाउणगे। डॉ सिंह ने कहा कि रोबोटिक मेडिसिन रोबोटिक एंडोक्रेनोलॉजी अते रोबोटिक कार्डियोलॉजी भविख विच वर सकदे ने जिवें कि AI वख-वख मेडिकल खेत्रां विच अपनी थां बना रहा है। जीनोम इंडिया प्रोग्राम दा हवाला दिंदे होए डॉ सिंह ने कहा कि 10,000 व्यक्तियां दी जीन सीक्वेंसिंग पहला ही की जा चुकी है अते भविख विच यह उम्मीद की जाती है कि हर नवजम्मे बच्चे नूं सीक्वेंस किया जाएगा। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ @EIRRN ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ BSF ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। BSF ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ BSF ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਅਗਜ਼ਨੀ ਭੰਨਤੋੜ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਾ ਜਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਵਿਚੋਂ 7 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਦਕਿ 2 ਬਾਹਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ FIR ਵਿਚ 10 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ CVN ਜੈਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਘਰ ਵਿਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਸਲ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

0: एक किलोग्राम तो वध हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया है। खजाना मंत्रालय ने दस्या है कि पाबंदी शुदा नशीला पदार्थ 29 पाउच विच भर के होर समान दे नाल लुकाया गया सी। नशीले पदार्थों ते मनोप्रभावी पदार्थों एनडीपीएस एक्ट 1985 दियां संबंधित धाराओं तहत इसनों जब्त किया गया है। जापान में एशियाई खेडा विच भारतीय अथलीटा ने 13वें दिन शानदार कारगुजारी दिखांदिया हॉकी मुक्केबाजी कुश्ती ते तीरंदाजी विच सोने दे 6 तमगे जीते ने। भारत दी औरतां दी हॉकी टीम ने फाइनल विच मौजूदा चैंपियन चीन नूं 1-0 नाल हरा के सोने दे तमगा अपने नां कीता। लाल टीम सियामी हमार जोट ने भारत लई फैसला को निकलौता गोल कीता, जदों कि गोलकीपर सविता पुनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक ते इक अहम बचा करके लीड बरकरार रखी अते टीम ने सोने दा तमगा जित्तिया। इह जित 44 साल विच एशियाई खेडा विच औरतां दी हॉकी दा भारत दा पहला सोने दा तमगा, जिस नाल खिताब दी लंबी उडीक खत्म हुई है। इस तो पहला भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने मर्दां दे 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल मुकाबले विच सोने दा तमगा जित्तिया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूं, उनकी दुआओं से ही ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: मुक्केबाजी विच प्रवीण हुड्डा ने औरतों के 65 किलोग्राम वर्ग विच ते अंकुश पंगाल ने मर्दों के 80 किलोग्राम वर्ग विच सोने का तमगा जित्तिया। भारत की स्टार मुक्केबाज लवीना बोरगोहेन ने भी औरतों के 75 किलोग्राम वर्ग विच सोने का तमगा जित्तिया।
2: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमगा जेतुआं नूं वधाई दित्ती है। पंजाब च सुरजीत हॉकी सोसायटी जलंधर ने भारत दी औरतां दी हॉकी टीम नूं एशियाई खेडां विच सोने दा तमगा जित्तण ते निघियां शुभकामनावां दित्तियां ने। आखिर च खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई दे भारतीय पायलट कैप्टन जोसमित प्रचार नाल हस्पताल विच गलबात कीती ते उन्हां दी दलेरी दी शलाघा कीती। औरतां बारे राष्ट्रीय कमिशन ने केंद्र सरकार नूं सिफारशां सौंपियां, 2030 तक 5 लाख बाल देखभाल केंद्र कायम करना शामिल। पंजाब विच बीएसएफ ने तरन तारण सैक्टर विच 2 पाकिस्तानी घुसपैठियां नूं मार मुकाया। एशियाई खेडां च भारत दी औरतां दी हॉकी टीम ने फाइनल विच चीन नूं हरा के सोने दा तमगा जित्तिया है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 होएगा। नमस्कार।
3: ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ।

और तुसे सुन रही सरदूल सिकंदर ते अमर नूरी दी आवाज च गीत असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हूं तो कुछ ही पलों च यानी 8:45 तुसे सुनोगे समाचार संध्या 9 बजे न्यूज़ 8 9 ते 9:15 स्पॉटलाइट साढ़े दिल्ली केंद्र तों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया, उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का

0: तो मान बढ़ा है और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
1: बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मित मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझना चाहिए। आभार का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: समाचार

श्रद्धा में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेइचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 30 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर इंगम तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने

0: पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
1: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया। यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
0: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
2: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
0: महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
3: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India win first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pankal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings with tally rising to 76 including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
5: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की और

0: या फिर जागरूक बनो। ध्यान रखो क्योंकि आजकल इन ठगण ने नए तरीके ने, क्योंकि नौकरी देने वाले कभी भी पैसे नहीं मांगते।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: श्रोतियां दी जानकारी लिए सूचित कीता जांदा है कि दिल्ली तो विशेष प्रसारण होने कारण 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाय रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे श्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
3: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले 10 वजे ने कुछ ही पलों च तुसी सुनोगे वीवियां एशियन खेडां दियां मुख झलकियां साडे दिल्ली केंद्र तों।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
5: Hello and welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65kg freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
6: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां, जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी।

में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया, बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का, और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे, और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है, अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे।

0: हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
1: Next on to the wrestling mat, and this was a day when India had plenty at stake across four weight categories, and one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
2: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर जसाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के अब्बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय है। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी बाई फॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडित काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
1: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
2: Mukkebazi ring mein Bharati Mukkebazo ne virodhi boxeron par aisa punch jada ki ek hi din mein swarn padak ki hat-trick lag gayi aur itihas ke panno par likh diya ek naya golden adhyay. Asian Games mein Bharati Mukkebazo ne wo kar dikhaya jo aaj se pehle kabhi nahi hua tha. Lovlina Borgohain, Parveen Huda और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की। अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगझाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नबखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दे, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
2: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा

0: तीर चलाए कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा की एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's squadron teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सेपक टकराव में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगु स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष यमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और लोखोन सिंह इलांगबांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9 की बराबरी पर ले आए थे, लेकिन उसके बाद जापान ने अंतिम समय में बढ़त बना ली और दूसरे में तो जापान ने शुरू से ही लीड ले ली थी। एक समय 12-8 से जापान आगे हो गया था, लेकिन भारतीयों ने जबरदस्त संघर्ष दिखाया और स्कोर 12-13 पर ला दिया, यानी अंतर सिर्फ 1 अंक का। मुकाबला कहीं भी जा सकता था, लेकिन निर्णायक मौकों पर उनसे हुई चूक और जापान ने मौकों का फायदा उठाया, 15-13 से सेट और मैच जीत लिया। भारत ग्रुप में अपराजय रहकर सेमीफाइनल में पहुंचा था और ये भारत का क्वाड्रेंट स्पर्धा में पहला पदक है और एशियन गेम्स के इतिहास में सेपक टकराव में कुल मिलाकर 3रा पदक। सेपक टकराव टीम को बहुत साधुवाद।
1: We move on to the golf course, where the competition is heading towards its business end and the Indian contingent had plenty to play for in the round 3. Sakshi Mandwal has the details.
3: Pranavi Urs fired a 4-under-66 to take a 9-stroke lead heading into the final round of the women's individual golf event. India are also second in the team standings behind China, with Aditi Ashok and Deeksha Dagar still in contention for a team medal. In men's team golf event, Team India finished 6th after round 3 with a combined score of 11-under-par-409, carding 136 in the third round. Saptak Talwar continues to lead individual men's efforts, staying in the top tier after solid opening rounds.
1: It was a busy day for the Indian cyclist at the ISU Velodrome, action across 3 events. In the men's keirin, Ronaldo Singh crashed out in the repechages after taking 6th in the heat, while David Beckham

0: brings another huge day. We will bring you all of it right here on Akashvani. For now, from me Megha, editor Vishal Kumar and producer Shahnawaz Khan, it's a goodbye.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हुण तुसी सुन रहे सी वीवीआ एशियन खेडां दियां मुख झलकियां साडे दिल्ली केंद्र तों। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण पेश है हिंदी गीत।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे हो जी प्रोग्राम सरगम। जी हां, प्यार। सच्चा प्यार की हुंदा है? उसकी पछाण सिर्फ वड्डे वादियां दे नाल नहीं हुंदी, सगों छोटे छोटियां सच्चियां परवाहां दे नाल भी हुंदी है। सच्चा प्यार दिल नाल जुड़ा महसूस करवाउंदा है। ये कदी भी जताया नहीं जांदा। जिथे अपनेपन दे नाल आजादी दी नाल नाल इज्जत भी दित्ती जांदी है, उत्थे प्यार हुंदा है। जिथे खुशी विच हासा सांझा होवे ते औखे वेले चुपचाप किसी की हिम्मत बनन दी पूरी कोशिश कीती जावे, वो प्यार है। जिथे निभाण दी चंगी तरह कर्म करन दी ते विश्वास दे नाल जीवन विच अग्गे वधन लई प्रेरित कीता जावे, वो सच्चा प्यार है।

0: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਤਬੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਗਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इजराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25

रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल आंध्र प्रदेश केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वित्त मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: मीडियम वेव 343 एरिया 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। इस वेले रात दे 11:10 हो रहे ने। साडी इस सभा दा प्रसारण हुण समाप्त हुंदा है। मीडियम वेव 873 किलोहर्ट्स ते
2: साडे पसंदीदा प्रोग्राम सौगात दा, ते आओ फिर शुरू करदे आं प्रोग्राम सौगात। दिलां दा हाल अपने रेडियो बेली गौरव दे नाल। चलो जी शुरू करदे आं प्रोग्राम सौगात। प्रोग्राम सौगात सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं गौरव दी प्यार भरी नमस्कार। एक बारी फिर अज शुक्रवार दी रात है और तुहाडा रेडियो बेली गौरव तुहाडे नाल है। तो तैयार हो, फिर चक लो फोन 0181-3242-141 यानी 0181-234-2171। इस नंबर पर कॉल करो, जुड़ जाओ साढ़े नाल। तो गलबात करते हैं, राबता कायम करते हैं, थोड़े दिलों के राज जानते हैं और थोड़े दिलों के जानी जोड़ा तुसी गीत भेंट करना चाहते हो ना, पंजाबी गीत सुनाना चाहते हो, अपने दिल का हाल गीत राही दसना चाहते हो तो कर दो नंबर डायल। नंबर डायल नहीं कर सकते, ज़्यादा रात हो गई है, कोई नहीं व्हाट्सएप कर दो, टोटो बंद हो जाएगी। 94-655-36-0-77 9465-36-077 इस नंबर पर तुसी व्हाट्सएप मैसेज भेजना, अपना नाम लिखना, अपने शहर का नाम लिखना, जोड़ा गीत सुनना चाहते हो वो लिख दो, या जोड़े गायक का गीत पसंद है, किसी गीतकार का, किसी संगीतकार का, वह गीत लिखो, फिर असी तुहानू सुनावांगे उहदा गीत। तो बस तुसी दिल भी साढ़े नाल ला लेना, अपना जिहड़ा मोबाइल है उहदे ते भी कॉल जिहड़ी है उह साढ़े नाल मिला लेनी है। तो जदों तक तुहाडी कॉल आउंदी है फिर दलजीत दोसांझ नूं आवाज़ मार लईए, आ गए ने ये गाना लै के।

बिल्कुल जी, ये गुरनाम भुल्लर साहब बिल्कुल सही कह रहे सी कि उन्ना किसी होर ने नहीं करना जिन्ना तेरा मैं कर दी हाँ। और हुण मैं पढ़न जा रहा एक खास मैसेज, ये मैसेज मैनू भेजिया है अरविंद कुमार होर ने दिल्ली तो, और वह कहते हैं गौरव जी थोड़ा प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत वधिया लग रहा है, और वह कहते भी एक गल मैं करनी चाहवागा कि यह गल सारे दे सारे राष्ट्र वास्ते है, पूरे दे पूरे भारत वास्ते, पूरी दे पूरी दुनिया वास्ते है कि सानू जड़ा खाना है ना अपनी प्लेट दे विच उन्ना ही लेना चाहिए जिन्ना असी खा सकते हैं, उन्हों वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि साडा जड़ा भारत देश है ना वो खाना वेस्ट करने विच बहुत उतले पायदान ते है, यानी अगर मैं कहां कि पहले 20 नंबर चों असी आने हैं ना तो कोई वड्डी गल नहीं होएगी। देखो जी उन्होंने गल बहुत पते दी है कि सानू जड़ा खाना है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिथे एक पासे साडे देश बहुत सारे लोग हजे भी भुखे रहिंदे ने उन्होंने वो खाना खिला सकते हैं, पोषण नाल भरपूर वो खाना अगर उन्होंने दिता जाए तो एक तो खाना वेस्ट नहीं होएगा, दूजा किसी भुखे के ढिड च पै जाएगा। तो साढ़े गुरुआं का भी तो यही कहना है कि गरीब की जिहड़ी मूह है वह गोलक है जी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मैं जिन्ना भी शुक्रिया करा खास करके अरविंद होरां दा इदां दा मैसेज देने लई, कहिंदे हंगर फ्री भारत मिशन।

0: चल रहा है जी तुहाड़ा सारयां दा बड़ा मन पसंदीदा जिहदा नाम है सौगात। और सौगात प्रोग्राम दे विच बहुत सारे कॉलर भी सानू कॉल कर रहे ने और अगले किहड़े कॉलर दोस्त ने आओ जद तक उन्हां दे नाल गल नहीं करांगे तां किद्दां पता लगेगा। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: हैलो
0: हैलो जी, कौन बोल रहे ने? बिट्टू जी बहुत बहुत तुहाड़ा स्वागत है प्रोग्राम। तुहाड़ा सारयां दा अपना ही चल रहा, तुहानू पता ही है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोग्राम भी तुहाड़ा है और तुसी इस प्रोग्राम नू चला रहे हो। मैं तो बस जो तुसी गुजारिशां कर रही है मैं उन्हूं अगे तुहाडे तक पहुंचा रहा सारयां तक।
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, तुहाडे नाल असीं रात पूरी रहे हां और अगे भी रहांगे। ते गीत केड़ा तुसीं सुनना है?
1: आई गीत नूं सुना दिओ। सुन लई है शेर पुत्तर दे गाने तेरे कोल आ रहे जी नहीं करदा गाने।
0: वाह जी वाह, बिल्कुल तुहाडे कोल आन ते जी नहीं करदा। हुणे पिछे जे इक मैसेज आया सी, मैं पढ़िया सीगा, तो मैसेज भी सुन के मेरा भी जी इदां दे करन लग पिया। जी जी जी जी, तो बिल्कुल तुसी साडे नाल जुड़े हो, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद। और तुसी तुसी कह रहे सी तुसी कुछ खास मैसेज देना चाहुंदे सी।
1: हां जी बिल्कुल जी, खाने वाले जी खाने ही जी, खाना साफ ही खाना जी जी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: हां
0: बिल्कुल, तुसी सही गल कही है कि जिन्ना खाना चाहिदा उन्ना ही प्लेट चवाओ, बाकी नहीं तां फिर लै लो। जे तुहाडे कोल ज्यादा तां मन दिओ।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।

हाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब तो वड्डी गल कही है कि वेस्ट नहीं करना चाहिए और वंडो, और कहते कि वंड खाओ तो खंड खाओ, यानी जिन्ना वंडोगे उन्ना ही तुहानू होर मिलेगा। बहुत वधिया जी, तुसी बहुत वधिया मैसेज दिता है। तो आओ फिर तुहाडा पसंदीदा गीत सुनते हैं। भुपिंदर ता मैनू दा गाया ये गीत, तुसी सानू कॉल कीती साडे नाल जुड़े, इहदे लई बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया। बाय बाय।

प्यार नमस्कार है। कुल्लम रोड हरगोबिंद नगर नवे शहर तो जुड़े ने और सुरेंद्र संधू और सारा संधू परिवार से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सारिया की जी हूँ मिली जुली जी फरमाइश है ना, बड़ी जबरदस्त फरमाइश है। हम तुम कहो गे कि जबरदस्त फरमाइश क्यों है? देखो जी, हूँ जो जबरदस्त फरमाइश है तो पिछे कोई ना कोई तो कारण है। वो की कारण है वो तुम गीत सुनोगे वो तो पता लग जाएगा। हम तुम कहो कि गीत तो उदो सुनाओगे ना, पहले सुन दसो कि गीत सुना जा रहे हो। दस दिया तुहानू पक्का सुनना जे। मैं तुहानू गीत सुना जा रहा गुरु रंधावा का। हाँ जी, गुरु रंधावा का। गुरु रंधावा का किहड़ा गीत? लो जी चल पिया। वो मैं क्यों कहा सी गीत बहुत जबरदस्त है? वो गीत इस करके जबरदस्त सी क्योंकि ये हाई रेटेड गबरू जो आते हैं ना तो गीत अपने आप वधिया बन जाते हैं। आ सुनिए।

गुरबाणी विचार ये तुसीं सरवण कर सकते हो ठीक 3 बजे और 3:30 बजे होएगा कुछ भगती संगीत। तो आओ फिर जुड़ते हैं थोड़े सारे नाल। सुखविंदर शिंदा, राहत फतेह अली खान इन्हां दी जुगलबंदी ये गीत लैके आई है।

आप जी दे सोने चरण कमल मेरे हिरदे घर विच वस जाण। दास दी यही अरदास है कि हे गुणा दे खजाने प्रभु, तू कदे भी मैनू ना विसरे। फरमान है, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। ए बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे। सरन करदे हां भाई गोपाल सिंह ते उन्हां दे रागी जथे द्वारा गायन किया हुआ यह शब्द।

ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हे प्रभु जी, मैनूं ऐसे दर्शन दिदारे बख्शो कि मेरा ढाडी दा मन तृप्त हो जावे। जे प्रभु तुठदा है तां आप ही पुकार करन वाले नूं अपने घर बुला लैंदा है, ऐसे दिदार दिंदा है, फिर सब दुख अते भुख दूर हो जांदे ने। फिर कोई होर मंग नहीं रह जांदी, प्रभु दे चरनी लग के सब इच्छावां दी पूर्ति हुंदी है। इंज निर्गुण ढाडी नूं प्रभु बख्श के कृपा करता है अते अपने नाल मेल लैंदा है। प्रभ जीओ देवा दर्शन अपना, जित ढाडी तृप्तावै, अरदास सुनी दातार प्रभ, ढाडी कौ महल बुलावै। इस पौड़ी का गायन किया भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

प्रभ जीओ देवा दर्शन अपना जित टाडी तृप्तावे। इस शब्द का गायन किया सी भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच चलाया हौच खटिया हौच गया हौच सचिया पूरियार हौच बापन विचार हौच नरक स्वर्ग तार हौच हंसे हौच रवे हौच भरिए हौच तुवे हौच जाति जन सिपुर हौच मूर्ख हौच स्याणा मुख मुख की सार न जाना हौच माया हौच आया हौच में कर

जोग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्रह्म ने कत्री शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दन एक शब्दन।

0: देव देवा ताय आत्मा आत्मा बस से गुजर भयो नानक का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे पता ढल रहे ढल बिन कुंभ ना।

0: गुरु जगत शरण से अंगरो राज जोग लहना करे।
1: मन विश्वास पायो गहर गोदरे दियो गर नास्ता नठिया अमे अंतर्गत पियो रित बिगास जाग्यो अलख कल तरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उदारो चित दारिद हरन बिखंते कल मल तसन सदरंग सहज गल उचरे जस जंप ले ले रसन सदरंग सहज गल उचरे जस जंप ले ले रसन।
2: सदा अकाल रहै करम स्यों इच्छा चारै द्रोम सपूर जो निवै खवै कस बिमल बिचारै एह तत जान्यो सर्ब गत लख बिडाणी सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुर गम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्राहज लयो हर परस्यो कल समूल वै जन दर्शन लहने पयो।
3: नाम अखत नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोह रंग

0: दर्शन परसिया गुरु का अठ सठ मजन होए, दर्शन परसिया गुरु का अठ सठ मजन होए।
1: सच तीरथ सत इशना अर्पो

सदा सच पाखंत सो है, सच पायो गुरु शब्द सच नाम संगति वो है। जिस सच संयम वरत सच कब जन कल वखान, दर्शन परसे गुरु के साजना परवान। जिस सच सं

0: करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानी हो जौ ता सब सुख इत उत तुम बंछव हो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो।
1: वाहे गुरु वाहे गुरु।

0: कहत माँ जो शोभ जिस दही पात खाए जियो देख रूप अत्यनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चमत्कार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सके इस बम ज्ञान त्यान तरत ही चाहे जियो सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे जियो
1: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलो पुरख भेटियो अपनासी आदले भगत जित लगत रे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो
2: चित चितव अरदास कहो पर कह दे न सको सर्ब

जन नानक सुख बसंते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का ई राखो पैज।